और महीना में अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, जो दिन बताए गए हैं इमाम शंबे यकशंबे यानी इतवार के दिन निकले थे 28 रजब को, फिर जब इमाम पहुंचे हैं तो उस दिन का हिसाब लगाया जाता है, तो 30 का महीना नहीं था बल्कि 29 का महीना था। तो इमाम 27, 28 और पहली दूसरी तीसरी तारीख को 3 शाबान को मक्के पहुंच गए, मक्के की सरजमीन में। फिर 3 शाबान से लेकर के जुमे का दिन था जब इमाम वहां पर पहुंचे, 3 शाबान को 3 शाबान से लेकर के 8 जिलहिज तक इमाम मक्के ही में ठहरे। तो ये पूरा तकरीबन 4 महीने 5 दिन होते हैं जो इमाम ने मक्के में कयाम फरमाया। और उस मक्के के दरमियान में खुद मक्के की जिंदगी में भी इमाम से मुतअद्दिद मुलाकातें हैं, मुतअद्दिद गुफ्तगू है। वो अभी नहीं आपकी खिदमत में पेश हो सकी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आपके सामने कोई और पेश करेगा या आप खुद पढ़ेंगे। अहम है वो, बहुत सारे अहम मसाइल हैं, बहुत सारी अहम मुलाकातें हैं इमाम की, खासकर आखिरी दिनों में जब ये तय हो गया, धीरे धीरे तय होने लगा। यहाँ पे तो इमाम ऐलान कर रहे हैं 8वीं ज़िलहिज की शब में, जो 8वीं ज़िलहिज को निकलना है, जुमला भी इमाम के इन्नी राहिलुन मुस्बहन इंशाअल्लाह, कि मैं सुबह में निकलने वाला हूँ, राहिल रहलत करने वाला हूँ। रहलत करना यानी किसी एक जगह से निकलना, कि कभी कभी मौत के लिए भी कलमा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इंसान जो इस दुनिया से निकल कर आखरत की दुनिया की तरफ जाता है, रहलत करता है, रूह है इंसान जो है एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल होती है, तो उसे इंतकाल भी कहते हैं और रहलत भी कहते हैं। लेकिन इस माने में इमाम ने यहाँ पे नहीं फरमाया, इमाम ने फरमाया कि मैं मक्के से निकलने वाला हूँ, इन्नी राहिलुन, मैं राहिला सवारी को भी कहते हैं, राहिला अरबी में जिस पर सवार होके इंसान कहीं से आता और जाता है। तो ये आखिरी जुमले में फरमाया। शुरू में इमाम ने फरमाया कि जब सामने लोगों को इकट्ठा किया, ज्यादातर इमाम के करीबी लोग थे, घराने के लोग थे जो साथ में आए थे वो भी थे, और मक्के में और भी इमाम के खानवादे के और लोग भी जो मक्के में इमाम को मिल गए थे वो भी थे। उनके सामने इमाम ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह, इस पे हम अभी वजाहत नहीं करेंगे, लेकिन इन जुमलों को हम शायद समझें धीरे धीरे कि मुश्किल हालात में अल्लाह की हम्द करने का मजा ही क्या होता है, मजा क्या होता है और किस तरह का मजा होता है। हम आम समझते जब हमें कोई नेमत मिले तभी अल्लाह की हम्द करें, जब कोई हमें अल्लाह की तरफ से कुछ खास लुत्फ हो जाए तो बस अल्लाह की मद की जाए, अल्लाह की हम्द की जाए, खुशी हुई हो। लेकिन जो लोग जानते हैं कि नेमतों के साथ साथ बलाओं और मुसीबतों के जरिए से बड़े मकामात तक पहुंचा जाता है, अगरचे बलाएं और मुसीबतें और तकलीफ इंसान को मुमकिन है मादी तौर पर और मेटरलिस्टिक तौर पर कोई फायदा नहीं पहुंचा रही हो, लेकिन बल्कि नुकसान भी हो रहा हो, तो जिसकी निगाह सिर्फ मेटरलिस्टिक निगाह है तो वहां पर तो परेशान हो जाएगा, वहां पर तो शिकवा और शिकायत करेगा। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इन जुमलों से आगाज करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाह की हम्द है, और अल्लाह की जो मर्जी हो, जो अल्लाह की मशीयत हो, अल्लाह जो चाहे, माशा अल्लाह, अल्लाह जो चाहे, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कोई ताकत और कोई कुव्वत नहीं है सिवाय अल्लाह के, और वसल्लल्लाहु अला रसूलही वसल्लम। अलबत्त इसमें खुतबे में इतना ही जुमला लिखा है, लेकिन आमतौर से हम सलवात पढ़ते हैं तो वो आल ही के इजाफे के साथ अल्लाहुम्म सल्ल अला मुहम्मद व आल मुहम्मद अज्जल फरजहुम, और सलवात हो रसूलुल्लाह की जात पर और सलाम हो रसूलुल्लाह की जात पर, और जाहिर है कि रसूलुल्लाह की जात पे सलवात व सलाम हो तो आले रसूल पर भी सलवात व सलाम हो। और इस वक्त जो 67 हिजरी में मक्के में आले रसूल की सबसे ज्यादा अजीम फर्द जो है मौजूद, जो वो फर्द है वो खुद ज़ात हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह, अल्लाहु सल्लि अला मुहम्मद। तो ये अल्लाह की हम्द फरमाई है, और मुतअद्दिद जो खुतबे बाद में भी हैं वहां पर भी इमाम हुसैन सलाम इसी तरीके से अल्लाह की हम्द फरमाते हैं। आम तौर से हमारे यहाँ भी राइज है कि जब

इज्जत और एहतराम में ना बोले, घर वाले ना बोले, बुजुर्ग के लिए ना बोले, लेकिन समझ में आ जाता है, बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। तजारत की दुनिया में भी कोई कहता है कि झूठ से बड़ा फायदा उठा लेते हैं, बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा, बड़ा नुकसान भी उठा लोगे। अभी फायदा उठा लें लेकिन बाद में नुकसान ही उठाना है। बाज मुल्क ही हैं जो झूठे मुल्क मशहूर है, तो उनको पूरे मुल्कों को नुकसान हो जाता है। मैं इसके कई नमूने पेश कर चुका हूँ, अभी नहीं अर्ज करता हूँ यहाँ। तो एक बुनियादी मसला है। तो एक जुमला मुझे इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का याद आ रहा है, असल में हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की, और रसूलुल्लाह की हदीस को इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने उलमा, सिर्फ उलमा, बास तकरीरें होती थी रहबर की भी और इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की, जहाँ पर सिर्फ उलमा को दावत दी जाती थी। तो ऐसे दर्स भी होता था, तो दर्स में तो उलमा ही रहते हैं, दर्स से खारिज जो इश्तिहाद का दर्स होता है तो उसमें उलमा ही होते हैं। दूसरे लोग बेचारे आके क्यों बोर होंगे कि वो दर्स से खारिज तो समझ में नहीं आएगा दूसरों को। तो कभी कभी होता है ज़ियारत करने लोग जाते हैं, जाके बैठ जाते हैं, अरे आयतुल्लाह जवादी आमली दर्स दे रहे हैं और आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी दर्स दे रहे हैं, तो चलो हम भी बैठते हैं। वो बेचारे बोर हो जाते हैं, बहुत बुरी तरह से बोर हो जाते हैं। अगर फारसी समझ में आ रही हो तो भी बोर हो जाते हैं। चले आप लोग तो जाते हैं, चलो देख रहे होते हैं, लेकिन फारसी जबान के लोग ईरानी भी आते हैं, थोड़ी देर बैठ के बोर हो जाते हैं। दर्स से खारिज में बैठेंगे इस्तेहाद के दर्स में तो बोर तो होना ही पड़ेगा, जैसे हमारी मजलिसों में बाज़ लोग बोर हो जाते हैं। दर्स से खारिज नहीं है, लेकिन बहरहाल वो जिनको बुनियादी चीज़ों की आदत नहीं है तो वो तफरी वाली चीज़ें कहीं और ढूंढ रहे होते हैं। तो अर्ज ये कर रहा था कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ जो है उलमा को बुलाए, वो वीडियोस की मौजूद है, अभी भी मौजूद है, और वहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस आपने फरमाई, आपने हदीस बयान फरमा रहे थे, और उस हदीस में वो हदीस जो फरमाई की, देखें कुछ लोग ऐसे होंगे कि आखिरत में, इस पे गौर से सुने, हम सब सुने अपनी जिंदगियों के लिए, खासकर अपने घर के मसाइल के लिए, घरेलू तरबियत के लिए, और ये बात उलमा को इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने बताई तो फिर हम लोगों को ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है सबको। खुदा करेगी उलमा तक बात ये पहुँचे, और ख़ासकर जो लोग जिम्मेदार हैं, एक घर के जिम्मेदार हैं, एक ट्रस्ट के जिम्मेदार हैं, एक जो है इदारे के जिम्मेदार हैं, यहाँ भी हैं हमारे, अभी ट्रस्ट में ये होता है कि बाज़ लोग, सिर्फ उनकी फिक्र ये होती है कि लोगों तक कितना अच्छा प्रोग्राम पहुँचा दिया जाए, लेकिन हमें तो कुछ नहीं सुनना। इन सच में हमें याद है कि हम लोग एक प्रोग्राम कुंभ में शुरू करने जा रहे थे, जैसे ही शुरू करना शुरू किया सबसे पहले अपने बुजुर्ग के पास गए, उनसे कहा कि हम लोग एक प्रोग्राम इस तरह करना चाह रहे हैं, तो लाभ में बड़ी मुश्किलात नजर आई, बात चीज़ें नहीं समझते हैं, तो इस तरह के सिलसिलेवार प्रोग्राम करना है, थोड़ा मुश्किल प्रोग्राम था। तो उन बुजुर्गवार ने हम लोगों को कहा कि आप ये सोच के करें नहीं कि तो लाभ के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, ये बहुत ही अहम नुकता था, ये तकरीबन 20-22 साल पहले के, लेकिन अभी तक याद है। कहा कि नहीं, आप ये सोच के बिल्कुल प्रोग्राम ना करें कि हम तुलाब के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, आप ये सोच के करें कि आप अपने लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, खुद अपने लिए कर रहे हैं। हम 7-8-9 लोग थे, तो ये सोच के करें कि आप अपने लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, तो जब अपने लिए प्रोग्राम करेंगे तो बाहर खड़े होकर खाली हाथ नहीं मिला रहे होंगे कि आओ आओ मेरा प्रोग्राम है, मेरा प्रोग्राम है, मेरा प्रोग्राम है, बाहर अंदर चले गए, तो बल्कि उसका फायदा ये होगा कि जब आप अपने लिए प्रोग्राम करेंगे तो अगर कुछ लोग और आ गए तो खुशी होगी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों ने और इस्तेफादा किया, लेकिन अगर कोई ना भी आया तो आपके हौसले पस्त नहीं होंगे, क्योंकि इस नियत से किया ही नहीं था, अपने लिए प्रोग्राम किया था। भाई क्या होता है कि हौसले पस्त हो, अरे मजमा कम हो गया, लोग कम हो गए, नहीं नहीं, अपने लिए प्रोग्राम करें, अपने बच्चों के लिए प्रोग्राम करें, अपने बच्चों को लेके आए, और अगर हाँ और भी मोमिनीन आके इस्तेफादा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कितना अच्छा है। तो ये मतलब रसूलुल्लाह की हदीस में बहुत ही खूबसूरत बयान, इसे गौर से सुनने की जरूरत है सबको, घर के हर जिम्मेदार को। जैसे बाज वक्त वालदैन चाहते हैं कि मेरा तो कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे बच्चे तो अच्छे हों, मैं तो कितना भी बुरा करूं लेकिन मेरे बच्चे बुरा ना करें, तो नहीं भाई ये नहीं तरीका है। मैं तो कुछ भी ना सुनूं लेकिन लोग आके मजमा ज्यादा हो जाए, सब बहुत गौर से सुने, और मैं भी अगर पढ़ूं तो लोग सुन के उस पर अमल करें, चाहे मैं अमल करूं या ना करूं, है ना। तो ये सब के सब एक बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। वहां पर रसूलुल्लाह की हदीस बयान फरमाई कि कुछ लोग होंगे जो पुलिस राज से गुजर के जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, और जन्नत की तरफ जाते जाते उनकी नजर पड़ेगी उधर जहन्नम की तरफ,

0: वहां पे कुछ लोग नजर आएंगे तो वो ताज्जुब से पूछेंगे कि फरिश्तों से कि ये क्या हुआ, इन्हीं की बातें तो सुन सुन के हम जन्नत में जा रहे हैं। ठीक है, और ये जुमला कह के इमाम खुमैनी भी रोने की हालत में थे, लोग नीचे रो रहे थे। अभी हम लोगों को शायद रोना ना आए इस बात पे, लेकिन लोग रो रहे थे नीचे कि वाकई ये खतरा तो है, ये खतरा तो है। हम तालिब इल्म हैं, हम जाकिर हैं, हम खतीब हैं, हम बाप हैं, हम माँ हैं, हम अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, लेकिन बच्चों को बचाने के लिए खुद को बचाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों के लिए मजलिस करना चाहते हैं लेकिन हमें कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। तो लोग सुनेंगे तो लोग तो जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन आपको क्या हाल होगा? और अगर लोग सुन के आपकी बात पे अमल कर लें तो वो तो बहिश्त में चले जाएंगे, लेकिन खुद बात करके उस पर अमल ना करें तो आपको क्या होगा? तो वहां पर फरिश्ते जवाब देंगे कि यही वो लोग थे कि जो कहते थे उस पर अमल नहीं करते थे। अल्लाह अकबर। और कब ऐसा होता है जब इंसान कोई बात कहे और उस पर अमल ना करे? जब बात दिल से ना कही जा रही। अगर सिर्फ जबानी बात हो तो अमल करने की जरूरत नहीं है। खताबत के जोर जितने भी लगाने थे लगा लिए, तो अमल की जरूरत नहीं। अल्लाह, ये खतरनाक है। ये मैं सबको इसमें शामिल किए दे रहा हूं कि जो भी कुछ लोगों के जिम्मेदार हैं, चाहे अपने घर के दो तीन बच्चों के दो लोगों के जिम्मेदार हैं, एक ट्रस्ट के जिम्मेदार हैं, ये देखा है हमने बहुत सारी जगहों पे कि उनको लगता ही नहीं कि हमें क्या करना है। हम तो प्रोग्राम कर रहे हैं, हम तो सारा प्रोग्राम कर ले रहे हैं, हमें तो प्रोग्राम करने के सवाब मिल जाएगा। वही मसला आ गया, ये सवाब वाला मसला अभी तक लोगों को परेशान किए हुए है। अब मुझे फोन करके कहने कौन सवाब के लिए मजलिस करता? भाई मैं देख रहा हूं लोग कह रहे हैं, नहीं मुझे तो मजलिस करने के सवाब मिल गया, मुझे क्या सुनना है? नहीं भाई, मजलिस करने के सवाब नहीं, आके सुने ताकि जो बातें बयान की जाए वो इंसान की जिंदगी में नजर आए। इसलिए अखलाक नजर आए, इल्म नजर आए, किरदार नजर आए। ज्यादा जा रही थी?
1: नहीं नहीं, वो छोटा।
0: अच्छा अच्छा, ठीक। तो वो नजर आया एक बुनियादी तौर पर। आज मुझे ताज्जुब हुआ है, क्लिप देख के मुझे ताज्जुब हुआ, लेकिन पूरी बात सुनी हमने, गौर से सुने। ठीक है, कुछ जाहिल लोग बेचारे नादान हैं या जो भी कहें, वो कुछ एक जुमला बना के हंगामा कर दिया, मुहर्रम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। अब कोई बगैर सुने समझे आकर उस पर बात करने लगे, पूरी बात सुने बगैर उस पर तबसरा करने लगे, तो मैं कई सालों से परेशान था कि बात मजलिसें होती हैं जहां पे 50-50 हजार लोग, 40-40 हजार लोग होते हैं, इतना बड़ा मजमा होता है। कहा भी कही तो भी इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं और सुना जा रहा है, और अगर इन मजलिसों में एक दिन एक भी कोई अच्छा मतलब जिंदगी का बयान कर दिया जाए जिससे इंसान की जिंदगी में फर्क आ जाए, एक भी कोई अच्छा पैगाम दे दिया जाए, तो 10 दिनों की मजलिसों में 10 पैगाम अगर एक कौम लेके जाएगी तो बहुत उसका असर होगा। 10 सालों में तो उसे 100 हुसैन इब्न अली का पैगाम मिल जाएगा, और अगर कोई 10 साल मजलिस हुसैन इब्न अली एक एक भी मजलिस कर रहा हो और एक मजलिस में उसे एक भी अगर पैगाम मिल रहा हो, तो 10 सालों में तो करबला की बहुत सारी चीजों को उसकी जिंदगी में नजर आ रही होगी, तो फिर कौम की हालत। तो मुझे ताज्जुब यह हमेशा होता था, आपको भी सबको होता, मुझे भी कई लोगों ने कहा कि मजलिसें इतनी हो रही हैं, इतना 50-50 हजार लोग बाद जगहों में सुनते हैं मजलिस, लेकिन कौम पे असर क्यों नहीं हो रहा? आपका इल्मी असर नहीं हो रहा है, मादी असर नहीं हो रहा है कि वो सारी चीजें लाजिम है। इंसान हर लिहाज से, शरफ और इज्जत एक मोमिन का हक है, हिकमत एक मोमिन का हक है, इल्म एक मोमिन का हक है, बुलंदी एक मोमिन का हक है। कुरान कहता है अंतुमुल आलाउन इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हें सबसे ज्यादा बुलंद रहना है। तो फिर मोमिनों ही को तो मजलिस सुनाई जाती है, सबसे ज्यादा बुलंद क्यों नहीं है? या इल्म में सबसे ज्यादा बुलंद क्यों नहीं है? या अखलाक में सबसे ज्यादा बुलंद क्यों नहीं है? ये सोशल जस्टिस में सबसे ज्यादा बुलंद क्यों नहीं है? ये इनका फैमिली स्ट्रक्चर और फैमिली के मसाइल में ये सबसे ज्यादा बेहतर क्यों नहीं है? मजलिसें तो इतनी ज्यादा सुन रहे हैं। तो मुझे आज रात समझ में आया

कि जब लखनऊ के एक बहुत बड़े मेंबर भी कहा गया कि नहीं मजलिस खुद ही मकसद है, मजलिस का कोई मकसद नहीं है। समझ में आ गया भाई, मैं तो परेशान था, मैं तो हैरत में था। अब वो कुछ इल्मी इस्तिलाह ला के हौजे की है कि मजलिस खुद मौजूयत रखती है, कुछ चीजें तरक्कीत रखती हैं, कुछ चीजें मौजूयत रखती हैं, मजलिस खुद ही मौजूयत, यानी कि मजलिस खुद ही मकसद है, मजलिस का मकसद बयान करने की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें वही है, कुछ दिन पहले हर्ष किया गया था ना कि मजलिस का बहुत बड़ा मकसद है। जब मजलिसों का अज़ादारी का बहुत ही अजीम मकसद है, बहुत ही बड़ा मकसद है, इतना बड़ा मकसद इसके लिए जनाब ज़ैनब शाम के दरबार तक गई, वहां से अज़ादारी शुरू की। अजीम मकसद है, पूरी हुसैनियत की हिफाजत इन्हीं मजलिसों का काम है। आपके हुसैनियत यानी क्या, का हुसैनियत यानी इमाम हुसैन का जिक्र नहीं भाई, हुसैनियत यानी जिसके जरिए से हुसैनी माशरा तरबियत पाए। मौजूद यही चल रहा है, क्योंकि आज के जमाने में हम देख रहे हैं कि कैसे हुसैनी माशरे तरबियत पाए हैं, जिसके नतीजे में शियत को इतनी अजमत हासिल हुई है, कुर्बानियां दी गई हैं, शहादतें दी गई हैं, लेकिन इतने अजीम नतीजे मिले हैं। लेकिन ये मेंटेलिटी, ये सोच इंसान की समझ में आने लगती है, एहतराम के साथ, हम किसी शख्सियत का भी एहतराम ही नहीं करना, जायज ही नहीं है, बहुत ही एहतराम है, दुआ भी कि अल्लाह हिफाजत फरमाए और बामकसद जिंदगी। लेकिन ये मौजू हमेशा रहा है अजीजों, ये अदब की दुनिया में भी रहा है, लिटरेचर की दुनिया में रहा है, कुछ लगे थे अदब बराए अदब या अदब बराए जिंदगी, अदब खाली अदब के लिए हो या जिंदगी के लिए हो, शेर बराए शेर या शेर बराए जिंदगी। अब अल्लामा इकबाल के शेर है जो जिंदगी के लिए हैं, लेकिन कुछ लोगों का अशार है मजे ले लो बस चले जाओ, मजे के लिए हैं। तो शेर मजे के लिए और होता है, शेर जिंदगी के लिए और होता है, किताब मजे के लिए और होती है, किताब जिंदगी के लिए और होती है, समझ रहे? तो वहां तक तो चलो फिर भी चलेगा कि चलो शेर है, शायरी है, अदब है, लिटरेचर है, मजे के लिए भी हो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन दीन तो सिर्फ ये नहीं है कि बस इसलिए है, मजलिस खाली मजलिस के लिए है, मजलिस खाली यानी बाकायदा लिटरली तौर पर यह कहा गया कि नहीं मजलिस मजलिस मौजूयत रखती है, मजलिस वक्त मजलिस है, यानी जो चीजें मौजूयत रखती हैं वो उसका मकसद वो खुद भी है, लेकिन उसके पीछे भी एक बड़ा मकसद छिपा होता है। यानी हमारी जिंदगी में बहुत सारे मसल, वजू जो है जाती तौर पर वजू कुछ नहीं है, लेकिन कहा जाता नहीं ऐसे भी वजू करो तो अच्छा है, तो वजू अच्छा है, लेकिन वजू के लिए भी एक मकसद है, नमाज पढ़ना है, नमाज भी अब मिसाल भी नमाज नमाज नमाज खुद एक मकसद है, नमाज खुद एक अहम चीज है, नमाज खुद एक अहम मसला है, लेकिन नमाज के लिए नहीं, सलात तनहा अल फहशा वल मुनकर, नमाज पढ़ोगे तो बुराइयों से दूर रहोगे। अकमिस सलात लज़िक्री, नमाज पढ़ो ताकि मेरे जिक्र से मेरी याद के करीब रहो, अल्लाह को भूल ना जाओ, नमाज पढ़ो ताकि अल्लाह को भूल ना जाओ। तो जो चीजें अहम है उसके पीछे भी कोई और भी बड़ा मकसद है। शहादत बहुत ही अहम है, मौजू भी यही है आज जुबला जमा सलाम, शहादत बहुत ही है मकसद, शहादत खुद मकसद है, इश्क परवरदिगार में इंसान जाके अपनी जान दे दे, दे ये खुद बहुत बड़ा मकसद है, लेकिन ऐसी शहादत जिसके पीछे कोई मकसद ना होगा वो खुद ही हल्की हो जाएगी, माना नहीं होगा। अब कोई खानदान के लिए शहादत देता है, कोई मुल्क के लिए शहादत देता है, कोई जमीन के लिए शहादत देता है, शहादत के पीछे कुछ ना कुछ तो होता है, कोई माल के लिए भी शहादत देता है, इस्लाम में कहा गया कोई अपने नामूस के लिए अपने माल के लिए, माल से मुराद 2-4-10 रुपए के लिए नहीं, अगर कीमती है उसके लिए भी अगर कोई जान दे दे तो उसको इस्लाम ने एजाजी शहादत का दर्जा दिया है। कई ऐसी 23-24 जगह हैं कि जहां पर शहादत का दर्जा दिया गया है। लेकिन बहरहाल ये शहादत जो माल के लिए हो, जो खानदान के लिए हो, जो जमीन के लिए हो, जो जमीन के टुकड़े के लिए हो, उसकी उसकी अहमियत उतनी है जितनी वो जिसके लिए है। जमीन वाली शहादत की अहमियत भी जमीनी की हद तक है। जो अपने खानदान के किसी काम के लिए शहीद हो जाए, दूसरे लोग उसका क्यों एहतराम करेंगे भाई, अपने खानदान के लिए आप शहीद हुए थे। अगर कोई हमारे मुल्क में हमारे मुल्क के लिए कोई शहीद हो रहा है तो हमारे मुल्क के लोग उसका एहतराम करेंगे। वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लोग हमारे शहीद का एहतराम क्यों करेंगे भाई, आपने अपने अपने अपने मुल्क के लिए जान दी। लेकिन कोई होता है जो इससे कहीं ज्यादा अजीम मकसद के लिए, जो वैल्यूज के लिए, जो इंसानियत के लिए, जो बुलंदियों के लिए, जो फजीलतों के लिए, और उससे बढ़ के कोई अल्लाह के लिए, जब अल्लाह के लिए शहादत देगा तो मकसद क्या हो जाएगा, बड़ा मकसद हो जाएगा। तो इमाम हुसैन सलाम की शहादत खुद इमाम को इश्क है इमाम से, इमाम को शहादत से, लेकिन शहादत का भी कोई मकसद है। ये बातें कैसे कैसे कही जाती, मुझे ताज्जुब होता है वाक्य। ठीक है सियासी मसाइल बहुत ज्यादा थे, इतना ज्यादा पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला, लेकिन ये तो बुनियादी मसला है।

इसे समझने की जरूरत है। तो ये मजलिसें खुद एक मकसद है, लेकिन मजलिसों के पीछे बहुत बड़े मकासिद हैं। और सबसे बड़ा मकसद क्या है कि इन मजलिसों के जरिए से एक ऐसा हुसैनी माशरा तरबियत पाता रहे कि जो हुसैनी वैल्यूज को, हुसैन इब्ने अली के अकदार को, और वो उन उसूलों को हमेशा जिंदा रखे। जुल्म की दुनिया में हमेशा हुसैनी उसूल बाकी रहे, जिंदा रहे। जालिमों के दरमियान में और फासिकों के दरमियान में ऐसे इंसान तरबियत पाते रहें कि जो हुसैनी उसूलों के साथ जिंदगी गुजार रहे हों। और इसका अजीम नमूना हमें इस नजर आ रहा है इस साल में। तो इमाम ने पहले तो खुद मौत के बारे में क्या फरमाया, मौत के बारे में इमाम ने फरमाया कि खुत्तल मौत अला वुल्द आदम, मौत लिख दी गई है वुल्द आदम पर। वुल्द आदम यानी औलाद आदम पर, ये तो यकीनी है, यानी ये तो हमें इसकी वजाहत की जरूरत ही नहीं है। कोई कितना भी मौत से डरा हुआ हो, कितना भी मौत से फरार कर, मौत तो आना है। तो खुत्ता, खुत यानी वही लिखा जाना, खुत्ता, खुत्तल मौत अला वुल्द आदम, आदम की औलाद पे मौत लिख दी गई। लेकिन मसला ये है कि वो जो लिखी गई है उसे इंसान किस तरह से लेता है, किस शक्ल में लेता है। इनकार तो कोई नहीं करेगा, दुनिया के कोई भी इंसान से इनकार नहीं करेगा। लेकिन मसला यह है कि उसे किस शक्ल में लिया जाए, लिखी तो है लेकिन किस शक्ल में लिया जाए। मसलन छोटा बच्चा, जैसे बच्चा बड़ा हुआ स्कूल जाना उसके लिए अब लिख दिया गया है कि लाभ अब तो जाना ही है, पढ़े लिखे घराने में लिख दिया। लेकिन वो किस तरह उसको ले, उसे इल्म के लिए ले, उसे पढ़ने के लिए ले, उसे अपनी ग्रोथ के लिए ले, फिर मेंटल ग्रोथ के लिए ले, या जो है क्या ले, उसे आफत ले, उसे मुसीबत ले, उसे नींद के खराब होना ले, कैसे ले, लेना है ना। तो मौत तो लिखी हुई है, हतमन लिखी है, लेकिन मौत को किस तरह ले, खौफ से ले, डर से ले, मकरूह समझ के ले, मनफूर समझ के ले, बेजार हो मौत से, हरगिज चाहत ना हो मौत की, बिल्कुल नहीं हो, ये सब और भी बहुत सारे तरीके सोचते हैं जिस तरह से लोग मौत लेते हैं, मौत को लेते हैं। लिखी तो है, ये तो है, तय है। लेकिन हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया, इमाम ने कैसे लिया, अल्लाह अकबर। अगर ये ताबीरें ना होती तो दुनिया के किसी भी लिटरेचर में ये चीज मिल ही नहीं सकती थी, अगर ये अहले बैत अलैहिस्सलाम की जबान से निकले हुए जुमले ना होते। तो इमाम ने किस तरह लिया मौत को, इमाम ने लिया कि मखत्तल कलादते अला जी दिल फतात, मौत ऐसे ही है कि जैसे एक जवान लड़की के गले में लटका हुआ हार। आप खूबसूरती देखें, ये भी नहीं कि कोई भी औरत, बूढ़ी औरत, बूढ़ी औरतें ऊपर सुननी बुरा नहीं माने कोई, लेकिन हुस्न यानी मौत का हुस्न दिखाया जा रहा है। अब ताबीर देखें, हार वो भी एक जवान खातून के गले में, यहां पे इमाम ये नहीं दिखाना चाह रहे कि आपके जहन के, आपके जहन से ये जाए कि एक मौत जैसी चीज को जिसको आम तौर से दुनिया के लाख में एक लाख लोगों में, अभी ये सौ पे तो बात नहीं होगी, 99% तो नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं एक लाख लोगों में 99,999 लोग मौत से बेजार ही होंगे, मौत से डरे ही होंगे, मौत से परेशानी होंगे, मौत चाहते ही नहीं होंगे किसी तरह से। लेकिन लाखों में कोई तो एक होगा लेकिन चाह रहा होगा, लेकिन कितना चाह रहा होगा, कितना चाह रहा होगा। अभी बहुत सारे हमारे शहदा, उन्होंने शहादतें दी, उन्होंने भी मौत चाही थी तो गए थे, लेकिन इतनी चाहत, इतना इश्क, ये कहा जाए कि जैसे एक जवान लड़की के गले में हार लटक रहा हो, जैसे वो हसीन है वैसी मेरे नजदीक मौत हसीन है, खूबसूरत है। कल वो जुमला तो नहीं पढ़ सके चूंकि इतना टाइम नहीं रह गया था, कि तेरा इसी घराने का, इसी घराने के 13 साल का बच्चा कहता है कि अल मौत अहला मिन अल असल, मौत तो मेरे नजदीक शहद से भी ज्यादा शेरी। ये शबे आशूर में कहा, अलबत्ता इमाम हुसैन सलाम का जुमला अगर आया तो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इमाम हुसैन सलाम पहले ही रास्ते में भी ये जुमला कह चुके, अल मौत वल मौत अहला, मौत बहुत शीरीन है, असल के लफ्ज नहीं कहा। जब किसी चीज से कंपेयर कर दिया जाए तो ये कंपेरेटिव डिग्री में आ जाएगा, मिन अल असल यानी शहद से ज्यादा।

शेरी, लेकिन जब अगर किसी चीज से कंपेयर नहीं किया जाए तो अहला कहा जाए तो क्या होगा, ये सुपरलेटिव डिग्री में होगा, यानी सबसे ज्यादा शेरीन, सबसे ज्यादा महबूब, सबसे ज्यादा पसंदीदा, सबसे ज्यादा जो चीज इस दुनिया में चाही जाए, अल्लाह हू अकबर, इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो चीज चाही जाए वो क्या है? नहीं आप बोलेंगे नहीं, आप मुझे मालूम है, चूंकि ये तय हुआ है कि जो बात बोलना है दिल से बोलना है, जबान से नहीं बोलना है ना। लेकिन इमाम हुसैन क्या कह रहे हैं, वल मौत अहला। मैं जुमला आपके सामने बाद में पढ़ूं, अभी मेरे सामने नहीं है, लेकिन अभी कल ही परसों ये पढ़ा हुआ है। तो सुपर, ये सुपरलेटिव डिग्री, जो कह रहे हैं अहला तो किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, जनाब कासिम कंपेयर कर रहे हैं अपने बचपन के लिहाज से। एक 13 वर्ष के बच्चे से पूछा गया है रात के अंधेरे में, मख्तल सजा हुआ है, जंग होने जा रही थी, अभी रात के लिए जंग रोक दी गई है, कल सुबह जंग होनी है, उसे बताना है कि मौत क्या है तुम्हारी नजर में, तो अपने अपने सिन के लिहाज से कहा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है। अब ये आज के बच्चे शायद नहीं समझते हो कि शहस्त कितनी ज्यादा अहम है, लेकिन इससे ज्यादा पसंदीदा और मुफीद और महबूब चीज नहीं थी। अमीरुल मोमिनीन ने भी अपने खुतबे में, बल्कि खत में, जनाबे अपने गवर्नर को, नाम याद करें बताएं मुझे, अभी आ जाएगा, अपने गवर्नर को जब खत लिखा, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले, अपने जब गवर्नर को इमाम ने खत लिखा तो कहा कि मैं भी चाहता तो मैं भी शहद और रोटी खा सकता था, अगर मैं भी चाहता। ये सबसे महबूब गजा थी अरब की, सबसे ज्यादा महबूब गजा ये थी कि अगर मैं भी चाहता तो मैं भी शहद और गंदम की रोटी खा सकता था, लेकिन मैं ये नहीं खाता। तो शायद अमीरुल मोमिनीन का जुमला सुना हो इस बच्चे ने, 13 साल में उसे बताना है कि सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या होती है, तो जो चीज सबसे ज्यादा बेहतर समझी जा सकती है, फौरन कहा कि अलमौत अहला मिन अलसल, मौत तो शहद से भी ज्यादा शीरी। ये जबानी बात नहीं है अजीजों, ये कल के दिन साबित किया किस तरह से मक्तल में गया, तस्मे नहीं बात रहे, ऐसी सवार हुए जा रहे हैं, ऐसी चले जा रहे हैं, वो साबित किया इमाम हुसैन सलाम ने उसको दूसरे अंदाज से पेश, अहला सबसे ज्यादा शीरी। और यहां पर क्या फरमाया, यहां पर फरमाया कि ऐसा जैसे किसी जवान लड़की के गले में हार हो, हुस्न बताया वहां उसका शीरीन होना बताया, यहां पे उसका हुस्न बताया कि मौत इतनी हसीन है, मौत इतनी ज्यादा खूबसूरत है हुसैन इब्न अली की नजर में। और ये जुमला हम चंद दिन पहले, मुहर्रम से पहले कई मजलिस में कह चुके हैं कि एक मोमिन के लिए, ये रवायतें हैं, हमें अभी शायद अंदाजा ना हो, लेकिन जब एक मोमिन के पास मौत आती है तो उसकी जितनी भी जिंदगी थी 60 साल, 70 साल, 80 साल, तो उस लम्हे महसूस करता है कि इस पूरी जिंदगी में, चूंकि मौत जब आती तब तो जिंदा ही रहता है ना, तो इस पूरी 60-70 साल की जिंदगी में सबसे ज्यादा खूबसूरत लम्हा ये आया है कि जब हमारी मौत आ गई हमारे साथ। रवायतें हैं इसके लिए, मुतअद्दिद रवायतें, समझ रहे हैं? तो मोमिन की तो परेशानी नहीं है, ये इमाम ने खूबसूरती बताई। और एक जुमला और पढ़ते हैं, अभी यहां तक बात पहुंची है कि अमीरुल मोमिनीन ने, जब अमीरुल मोमिनीन के लोग कह रहे थे कि अली डर तो नहीं गए, माजल्ला माजल्ला बैठ गए हैं, इमाम ने अजीब जुमला फरमाया, इमाम ने फरमाया कि अगर मैं अभी तलवार उठाता हूं तो लोग कहेंगे कि अली तो हुकूमत के हरीस हो गए हैं, माजल्ला अली को तो हुकूमत चाहिए है, तलवार उठाए हुए हैं, जंग कर रहे हैं हुकूमत के लिए मदीने में, और अगर मैं अभी बैठ जाऊं तो लोग कहेंगे अली डर गए, अली डर गए, अली और डर गए, ये कहेंगे। इमाम ने फरमाया, तो वहां पे इमाम ने नजरुल आगा के 5 नंबर खुतबा है, वहां पे इमाम ने फरमाया कि वल्लजी वल्लाह वल्लाह ला इब्नो अबी तालिब आनसो बिल मौत मिन तिफ्ल बिसदये उम्मह, अल्लाह की कसम, अली को अल्लाह की कसम खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुमकिन है कुछ नादान लोग ना समझे हैं, इसलिए अल्लाह की कसम खा के बता रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन की जबान से जो जुमला निकलता है वो दिल की ही गहराइयों से निकलता है, कोई भी जबानी जुमला नहीं निकलता, लेकिन हम जैसे नादान लोगों को ज्यादा समझाने के लिए कि अल्लाह की कसम मौत से मैं उससे कहीं ज्यादा मानूस हूं, यहां भी कंपेयर किया गया है।

ऐसी जिंदगी में कौन सा मजा रह जाता है। और उसके बाद इमाम फरमाते हैं खुय्यरा ली मसरून वाना लाकी, मेरा मक्तल इंतखाब कर लिया गया है तो मैं उससे मुलाकात करने वाला हूं, मैं उस मक्तल तक जा। खुय्यरा ली मसरा, मसरा यानी वहां जहां इंसान पछाड़े खा के गिरे, जहां तलवे तीरों तलवारें तलवार खा के गिरे, तो वो मेरा अख्तियार हो चुका है। ये इमाम कब फरमा रहे हैं, ये सब के सब आठ ज़िलहिज्ज को मक्के में इमाम बयान कर रहे हैं कि ये मेरा मख्तल इंतखाब हो गया है तो मैं अना लाकी, मैं उससे मुलाकात करूंगा। वकअन्नी बेअवसाली तुकत्तौहा ज़ियाबुल फलवात बैन नवावीस व करबला, जैसे कि मैं अभी देख रहा हूं, जैसे कि मैं अभी देख रहा हूं कि वहशी दरिंदे मेरे जिस्म के टुकड़े जो है उधेड़ रहे हों। तो दरिंदे जानवर तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन करबला में जो तलवारें लेके आए थे उन वहशी दरिंदों से भी ज्यादा दरिंदे थे जो हुसैन इब्ने अली के जिस्म पे तलवारों पे तलवारें मारते जा रहे थे। तो इमाम तो करबला के वाकये के 32 दिन पहले ही ये फरमा रहे, मैं देख रहा हूं कान नहीं, मतलब कि जैसे मुझे दिखाई पड़ रहा है कि करबला की सरजमीन पे नवाबीस और करबला के बीच में मेरा जिस्म इस तरह होगा, इस तरह दरिंदे मेरे ऊपर टूटे पड़े कि ज़ियाब भेड़िए भेड़िए भेड़ियों का लफ्ज इस्तेमाल किया। फयमीलान मिन्नी अकराशन जौफा व अजर बतन शगबा, व टुकड़े टुकड़े मेरे जिस्म को पारा पारा कर रहे होंगे, चाक कर रहे होंगे ताकि अपने पेट को भरे। किस पेट को भरे? वो सिक्कों की लालच जो थी, सिक्कों की हवस से अपने पेट को भरे। हुसैन इब्ने अली के जिस्म से नहीं, ये सब ताबीर है, ताकि उन सिक्कों की लालच से, ताकि ये बता सके कि हमने भी जर्ब लगाई थी, हमने भी तलवार मारी थी, हमने भी तीर चलाया था, हमने इतना तीर चलाया था तो मुझे इतना सिक्का मिलना चाहिए। बाद में कोई ये भी कहे कि हमने भी हमने भी लाश हुसैन इब्ने अली पे घोड़े दौड़ाए थे, उसी के सिक्के चाहिए, हमें भी उसी के सिक्के चाहिए। उसके बाद इमाम फरमाते हैं कि ला महीसा अन योमिन लहमतहु लेकिन जो कुछ अल्लाह की तरफ से लिख दिया गया है, अल्लाहु अकबर, ला महीसा अन यौमिन खुत्ता बिल कलम, जो कुछ भी कलम से लिख दिया गया है अब उससे कोई भी छुटकारा नहीं है, हम उसके लिए बिल्कुल राजी हैं। رضي الله ورضان اهل البيت رضي الله ورضان اهل البيت, हम अहले बैत की मर्जी वही है जो मेरे रब की मर्जी है, ये मेरे अल्लाह की मर्जी है। نصبر على بلائه ويوفينا اجور الصابرين, हम उन सारी बलाओं पे मजबूत मुहकम तरीके से सब्र करने वाले हैं और हमें उसका साबरीन का जो अजर है वो मिलेगा। और उसके बाद फरमाया कि लन تشذ अन रसूलुल्लाह लहमतहु, ये तो नहीं हो सकता कि रसूलुल्लाह के जिस्म के टुकड़े को ज्यादा देर तक दूर तक रखा जाए। ये रसूलुल्लाह का टुकड़ा है, हुसैन रसूलुल्लाह के वजूद का हिस्सा है, तो रसूलुल्लाह के वजूद के हिस्से को कितनी देर तक दूर रखा जा सकता है, कहाँ तक दूर रखा जाएगा? लहमतहु जो आप गोश्त का टुकड़ा कहते हैं, तो ये हुसैन रसूलुल्लाह का टुकड़ा है, इसे दूर नहीं किया जा सकता। बल हिया मजमूअतुन लहू फी खतीरतिल कुद्स, नहीं बल्कि ये टुकड़ा जाके रसूलुल्लाह से मिल जाएगा, ये रसूलुल्लाह के वजूद का हिस्सा जाके रसूलुल्लाह से मिल जाएगा। तकर्रुब हिम ऐनहु, जिससे रसूलुल्लाह की आंखों को ठंडक होगी, हुसैन को भी ठंडक होगी, लेकिन मैं जब रसूलुल्लाह की बारगाह में जाऊंगा तो रसूलुल्लाह को भी, रसूलुल्लाह की आंखों को ठंडक मिलेगी। وَيُنْجَزُ بِهِمْ وَعْدَهُ, और अल्लाह का किया हुआ वादा पूरा हो जाएगा, वादा इलाही पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे इमाम ने आखिर में ये जुमला फरमाया कि ये तो होगा, मैं तो जा रहा हूँ।

हूँ, मेरी जगह लिखी जा चुकी है, मेरा मकतल तैयार है, अख्तियार हो चुका है। मैं तो रसूलुल्लाह की बारगाह में जा रहा हूँ, मैं तो रसूलुल्लाह की टुकड़ा रसूलुल्लाह से जाके मिलने वाला है। अब आपका क्या कहना है? तुम लोग जो है सामने, अपने जो सामने मौजूद थे उनसे फरमा रहे हैं कि हाँ मेरा तो तय हो गया है, आपको क्या करना है? मन क्या ना, यहाँ पे इमाम ने जुमला पर मन क्या ना फी न बादल मोहजत हु व मुअद्दिनन इला लिकाइल्लाह नफ्सहु फलियरहल माना, कि जो भी आमादा हो चुका है, जो भी अल्लाह से मुलाकात करना चाहता है, जो भी शहादत के लिए अपने नफ्स को आमादा कर चुका है, फलियरहल माना, वो भी चले, मेरे साथ चलना हो चले, जिसे बहाना करना है कर ले बहाना, कि हज तो करना है, हज कैसे छोड़ सकते हैं, मक्का कैसे छोड़ सकते हैं, कर ले जिसे करना, लेकिन जो आमादा हो चुका है वो मेरे साथ चले। इन्नी राहिलुन मुस्तहन इंशाअल्लाह। ये अजीजों वक्त नहीं ज्यादा रहा, मजलिस रोजाना देर हो जा रही, मुझे अफसोस भी हो रहा है, लेकिन इन जुमलों ने 14 सदियों से इंसानों की तरबियत की है। ये सिर्फ जुमले नहीं है, अमीरुल मोमिनीन के इन जुमलों ने लाखों लाखों इंसानों की मुसलसल तरबियत की है कि अली इब्ने अबी तालिब को तो मौत ऐसे ही है जैसे माँ अपने बच्चा अपनी माँ की आगोश में जाके माँ के पिस्तान दूध पीने लगता है, ऐसे है। ये खाली तारीख का एक जुमला नहीं है, ये अलवी तरबियत के लिए है। और जब ये हो जाता है, जब ये हालत हो जाती है कि ये इंसान इतना हक से आशना हो जाए और हक के लिए जान देने को तैयार हो जाए, तो फिर छोटी चीजें बहुत मामूली हो जाती हैं। हम जो बहुत सारे मसाइल में अभी उलझे रहते हैं, ये हमारी बात, ये तुम्हारी बात, ये या ये फलां, ये ऐसा वो ऐसा, ये ऐसा इदारा वो वैसा इदारा, ये सब इसलिए है कि हमने अपने आप को उन बड़े मरहलों में डाला नहीं है। अगर वो हुसैनी तरबियत और अमीरुल मोमिनीन की तरबियत के असरात आना शुरू हो जाए तो ये चीजें बहुत ही मामूली हो जाती हैं, बहुत छोटी हो जाती हैं, मेरी तौहीन, मेरा फलां, ऐसा किया वैसा किया, कोई माना नहीं है। कोई आगे कितनी भी तौहीन करे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हाँ हक की तौहीन ना होने पाए। अगर कहीं किसी बात का जवाब दिया जाता है, आज भी जवाब दिया गया, चूंकि बहुत बड़े मसले को छेड़ दिया गया, हक की तौहीन हो गई कि मजलिस का कोई मकसद ही नहीं। नहीं भाई, मजलिस फकत मजलिस के लिए नहीं है, मजलिस राह है हुसैन इब्ने अली से करीब करने के लिए, मजलिस इश्क हुसैन इब्ने अली के साए में जिंदगी गुजारने के लिए। और अगर कोई इश्क हुसैन इब्ने अली के साए में जिंदगी गुजारने लगे तो वो भी छोटा सा हबीब हो जाता है, वो भी छोटा सा जोहर हो जाता है, उस दर्जे का नहीं होता, वो भी चलो गुनहगार हम जैसा हो तो छोटा सा हुर हो जाता है, हो जाता है। ये तरबियत हुसैनी, अब ये जुमले कहे जाते थे, अब तो कहे भी नहीं जाते कि दरसगाह है, तरबियत गाह है, फला है, क्यों करें? बस तमाम अजीज खुदा की कसम, आज इतने तरबियत शुदा इंसान नजर आ रहे हैं जिनको देख देख के हम हैरत से, मंजर देख देख के ताज्जुब से हमारी आंखें पटी जा रही, कहां से पैदा हुए। तो ये सब के सब हुसैन इब्ने अली और अमीरुल मोमिनीन के इन्हीं जुमलों की तरबियत है, उस जिंदगी की तरबियत है जो इमाम गुजार गए, जिन्होंने सिर्फ जुमले नहीं कहे, जो कहें पूरे वजूद से कहे। जब वजूद से जुमला कहा है, दिल से कहा है, तो हर जगह वही नजर आएगा, हर मोड़ पे वही नजर आएगा, हर मक्तल में वही नजर आएगा, शब आशूर में वही नजर आएगा, सुबह आशूर वही नजर आएगा, अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी के हर लम्हे में वही नजर आएगा। और ये जिन्होंने करीब से देखा था, जिन्होंने, अगर हुर जैसा इंसान 12-13 दिन इमाम को करीब से देख ले तो ऐसा हुर बन जाता है, तो वो जो 32 साल से देख रहा हो ये सब कुछ, तो उसकी तरबियत कैसी होगी? वो जो 32 सालों से इसी साए में जिंदगी गुजार रहा हो, अब कोई ये कैसे सोच सकता है कि, ये तो शिम्र जैसे मलून जरूर सोच सकते हैं कि जो

हवा और हवस में आए हुए हैं, लालच में आए हुए हैं, बड़े इनाम के लिए आए हुए हैं कि ज्यादा कत्ल करेंगे तो ज्यादा हमें इनाम मिलेगा। तो ऐसे मलून लोग जरूर ये सोच सकते हैं कि चलो हम भी कहते हैं कि अब्बास तुम तो भाई बड़े जवान हो और तुम्हारे भाई लोग तो और भी जवान हैं, ये 20 साल 21 साल 24 साल 32 साल के जवान, ये तो मरने के दिन नहीं है, इतने बहादुर हो, इतने शुजा हो। ये सब लिखा नहीं अमानना में, लेकिन ये तस्वुर देना चाहते आखिर कि ये तो मरने के दिन नहीं है, ये तो जिंदगी के दिन है, यही कहा जा रहा होता है। तो मैं अमाननामा लेके आया हूं। तो

तो पूरे जंग में एक मसला, ये आप ये ना सोचे कि शिब्र को मलून को जो है अबुल फजल अब्बास से कोई मोहब्बत हो गई, अरे मेरे खानदान में कबीले में जो है उस माँ जो है इस कबीले की थी, कोई रिश्ता उश्ता नहीं था। लेकिन अरब में ये देखा जाए पूरे कबीले को देखा जाता था। ये सिर्फ बहाना था, ये सिर्फ बहाना लेके आया गया था कि इस पूरे लश्कर के मुकाबले में उधर अब्बास भी तो है, अब्बास भी तो है। और ये अभी बाद में अगर जुमले याद रहे मैं पढ़ूंगा तो इमाम हुसैन के जुमलों से भी आप समझ लेंगे, बल्कि अभी पढ़ देते हैं कि ए मेरे भैया जो आंखें सोती थी वो नहीं सो रही, और जो तेरे जो तेरे खौफ से डरते थे, जो लश्कर तेरे खौफ से डरता था, अब वो पुरसकून हो जाएंगे। अब्बास ये है, तो खौफ इतना ज्यादा था अबुल फजल अब्बास का कि कोशिश थी कि किसी तरह से, लेकिन नहीं समझ सकते थे। इसीलिए सुबह आशूर से लेकर असर आशूर के थोड़ा देर पहले तक यही मसला जारी रहा कि लोग आते रहे, जंग करते रहे, शहीद भी होते रहे, लेकिन दुश्मन फिर भी घबराया हुआ था। अभी भी तो उधर अब्बास है, अभी तो उधर अब्बास है, कोई नहीं है लेकिन अब्बास तो है। असहाब मारे गए लेकिन अब्बास तो है, अंसार मारे गए लेकिन अब्बास तो है, बनी हाशिम के जवान बहुत सारे मारे गए लेकिन अब्बास तो है। तो इसीलिए अबुल फजल अब्बास जब चले हैं जंग के बहुत ज्यादा इरादे से भी नहीं चले हैं, मशकीजा लेके चले हैं, बीच लश्कर से चले हैं, लेकिन जैसे ही जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं किसी खास जंग की जरूरत नहीं पड़ी, लश्कर भागता गया, पनाह लेके भागता गया, फरार करता गया, नहर अलकमा को छोड़ता गया। 4000 लोगों को जो नहर अलकमा पे तीर लेके लगाया गया था उनके तीर भी खाली होते गए। अली का बेटा आ रहा है, तीरों को काटते हुए, ढालों से रोकते हुए, फिर अगर तीर लगे हैं तो लगे हों जिसमें, लगे रहे। और जब लश्कर भाग गया, अबुल फजल अब्बास नहर के करीब पहुंचे, नहर में घोड़े को डाला, और घोड़े को डालने के बाद मशकीदा भरा। जब मशकीदा भर गया तो प्यासे है ना, एक फितरी मसला है कि प्यासे हैं, पानी है, ठंडा पानी मौजूद है। तो वहां पर इस सूरत में बेअख्तियार दिल में ये चाहत पैदा होगी कि पानी मौजूद है, मशकीजा भर चुका है, जंग करनी है। ये भी सोच सकते थे कि पानी पी लेंगे तो अपने आका की ज्यादा हिफाजत करेंगे, लेकिन ये अहले हक ईमान वाले ये बहाने नहीं देते अपने आप को, समझ रहे हैं? पानी तो पी लेंगे तो ज्यादा जंग कर सकते हैं। अच्छा पानी हम खुद पी के चलते हैं, मशकीजा पहुंचेगा तो हमें पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मशकीजा सब बच्चों में इस्तेमाल हो जाएगा, ये कोई बहाने नहीं। लेकिन दिल में एक ख्वाहिश तो पैदा होती है। तो उसी वक्त में अबुल फजल अब्बास ने उसी आलम में, जंग के आलम में इतना लश्कर मौजूद था, हम तो सिर्फ अबुल फजल अब्बास की शुजात पढ़ते हैं ना तलवार, लेकिन उसी हालत में अबुल फजल अब्बास ने 3 शेर पढ़े, शेर के जरिए से मुखातब किया, या नफ्सो मिन बादिल हुसैन हूनी, ए मेरे नफ्स तू क्या सोच रहा है पानी के बारे, हुसैन इब्ने अली प्यासे हैं, पानी क्यों पीना है, ताकि जिंदा रह जाए, ताकि जंग करें, तो हुसैन इब्ने अली के बाद जिंदगी क्या है, या नफ्स मिन बादिल हुसैन हूनी, ए नफ्स हुसैन के बाद कुछ नहीं है, हुसैन इब्ने अली के बाद पस्तियां ही पस्तियां हैं, वबाद हूं ला कुन थे अंतकूनी, हुसैन इब्ने अली के बाद तो तुझे तो नहीं रहना है, तो पानी किस लिए पीना चाहता, किस लिए पानी की आरज़ू हुई, किस लिए पानी के बारे में सोचा है, मिन बाद ही ला कुन थे अंतकूनी, हुसैन इब्ने अली के बाद तो तुझे नहीं रहना है, तो पानी किस बात का, हादल हुसैनो वारदुल मनूनी तश्रबीना बारदुल मईनी, ये हुसैन इब्ने अली तो प्यासे है और तू पानी ठंडे पानी के बारे में सोच रहा है। अल्लाह अकबर, तल्लाहे मा हादा फयाल दीनी, अल्लाह की कसम ये दीन का तो तरीका नहीं है, वला फयाल सादिकल यकीनी, ये ईमानदारों का तरीका नहीं है, ये उसूलों का तरीका, तो उसूलों का ख्याल रखा जाएगा। अगर मेरा आका प्यासा है तो दरिया में भी प्यासे ही वापस पलटना है, ये यकीन कर।

कहते हो तुम्हारे लोग जंग से थक चुके हैं, अब बेतरफ रहना चाहते हैं। अहले जंग व जहाद भी नहीं है, बरादर कुशी पे एतकाद नहीं रखते। है हाथ में नज़िल्ला, अपने आप को मुसलमान कहते हो, यही है तुम्हारी मर्दानगी। फरजंदे रसूल खुदा को माविया के चंद सिक्कों पे बेचते हो। हयात में नज़िल्ला, ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। खुदा लानत करे तुम लोगों पर।

0: बात क्या है, फिर ये क्या हो रहा है?
1: सुनो भाई, अबा मोहम्मद ने दोबारा तुम्हारी अहले बैत से मोहब्बत का शुक्रिया अदा किया है और कहा है, ये तुम्हारा जोश वलवला, जज्बा वो इखलास और इजहार हमदर्दी सब कुछ इस बात की दलील है कि तुम इस हुकूमत का दवाम चाहते हो जिसकी बुनियाद अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने रखी है। इस हुकूमत के सिलसिले में दुश्मनों की उम्मीदों पर पानी फेर दो और कुफ्र और शिर्क और नाइंसाफी का खात्मा करने के लिए कमर बस्ता हो जाओ। अबा मोहम्मद के दीदार के लिए हम लोग कल जाएं।

0: कल अबा मोहम्मद की ज्यारत को जाएंगे।
1: क्या तुमने उन्हें नहीं देखा?
0: क्यों नहीं देखा था, चंद साल पहले जब जवानी में अपने बाप के साथ तलवार चला रहा था, दोबारा उसके दीदार का मुश्ताक हूं। हर तुमने उन्हें कैसे

0: क्या बताऊं, मैंने अली मुर्तजा को नहीं देखा, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मैं उन्हीं के सामने बैठा हूं। हारिस, अगर मैं ना होता तो तुम लोग दमिश्क में रुक जाते, सही कह रहा हूं ना? और रशीद भी अपने दारोगा वाले काम पे बाकी रह जाता।
1: क्या मतलब है तुम्हारा?
0: अगर दमिश्क ही में रह जाते तो क्या अबा मोहम्मद की ज्यादा मदद नहीं कर सकते थे?
1: मैं और मेरे बेटे इब्ने अब्बास के कहने पर दमिश्क में रह रहे थे। रशीद भी हमारे इसरार पर माविया का जिंदान बान रहा और माविया पोशीदा तौर पर साजिशें करता रहा, और अली मुर्तजा लश्कर जमा कर रहे थे कि माविया की खबर लें। मैंने और रशीद ने कोशिश की कि उसके खुफिया साजिशों का पर्दा फाश कर दें और उबैदुल्लाह को बता दें, लेकिन अब तो हर चीज फाश हो चुकी है। माविया खुल्लम खुल्ला दुश्मनी जाहिर कर चुका है और अब हमारे दमिश्क में रहने की कोई जरूरत नहीं है।
0: मुझे तसल्ली दे रहे हो?
2: यकीन रखो, कोई चीज हमको दमिश्क में रोक कर नहीं रख सकती जो हमको अब्बा मोहम्मद की ज़ियारत से महरूम करे।
3: तो इसका ये मतलब है कि तुमसे कोई राबता नहीं है?
2: वहां पर देखो, अरे आग।
4: अब पता चलेगा तुम किसके मुकाबले में खड़े हो। तुम सबकी जबान निकाल, मैं तुम सब लोगों को दिखाऊंगा कि हसन इब्न अली के सिपाहियों को रोकने वालों का अंजाम क्या होता है। आग लगा दो इनके घरों को, जला दो इन सब के घरों को, और हसन इब्न अली की मुखालिफत करने वालों को निशाने इबरत बना दो। हसन इब्न अली दुश्मन से लड़ने के लिए फौज बना रहे हैं और तुम लोग उनकी हिमायत से इनकार कर रहे हो। अगर तुम लोगों को प्यार की जबान समझ में नहीं आती तो मैं तुम लोगों को दूसरी जबान में भी समझा सकता हूं। गिरफ्तार कर लो इनकी खवातीन को, और आज हम 6 खवातीन को लेकर जा रहे हैं और 2 हफ्ते के बाद वापस आएंगे। मैं आखिर में तुम सबको खबरदार करता हूं कि जंगी ताउन के लिए तैयार रहें, वरना तुम सबको कत्ल कर दूंगा और घर घर में आग लगा दूंगा, और फिर देखना कि हसन इब्न अली को ताउन न करने वालों का हाल क्या होता है।
5: कूफे की सिपाह,
4: हसन इब्न अली के सिपाहियों के लिए गिज़ा की जरूरत है। तुम लोगों ने तामून से इनकार किया, ऐसा क्यों?
1: यहां क्या हो रहा है?
4: तुम लोग दूर हो जाओ यहां से, तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। हम हुकूमत के नुमाइंदे हैं और उन्हीं के हुक्म से आए हैं।
1: कौन सी हुकूमत?
4: हसन इब्न अली की। दूर चले जाओ तुम लोग यहां से।
1: कहते हो कि हसन इब्न अली ने हुक्म दिया है कि मुसलमान जवानों की गर्दनें उड़ा दो और उनके घर जला दो और उनके बीवी बच्चों को भी कैद कर डालो।
4: हसन इब्न अली फौज बना रहे हैं और उनको मदद की जरूरत है।
1: बकवास न करो, तुम लोग झूठ बोलते हो। बताओ तुम लोग कौन हो और किसके लिए काम कर रहे हो? गिरफ्तार कर जाने न पाए।

0: कर सके। पकड़ लो उन्हें, पकड़ लो उन्हें। ले आओ इसे यहां। बताओ तुम्हें किसने भेजा है? अगर ना बताऊं तो खुदा की कसम, अगर नहीं बताया तो मैं तुमको इन्हीं लोगों के हवाले कर दूंगा।
1: ठीक है बताता हूँ। हम लोग माविया के सिपाही हैं, जाक ने हमें यहां भेजा है। हमें हुक्म दिया गया है कि हसन इब्ने अली के सिपाहियों का लिबास पहने और हर जगह आग लगा दें, और ये कहें कि हसन इब्ने अली ने भेजा है और हमें इस काम के लिए पैसा दिया गया है। इसमें हमारी कोई खता नहीं है।
0: मैं तुम्हें कूफा ले जाऊंगा अबा मोहम्मद के पास, और वो हुक्म देंगे, उसे कूफा ले चलो।
2: मैंने तुम्हें इसलिए कत्ल नहीं किया कि तुमने मेरा घर जलाया है, बल्कि इसलिए कत्ल किया है कि तुम्हारी वजह से मुझे फर्जंदे रसूल पे शक हो गया था।
0: वल्लाह कि तुम दोनों झूठ और फरेब का नमूना हो। कुफे में रहते हो, सहूलत राह से हासिल करते हो और शाम के दरिंदे पर जान देते हो।
3: हम किसी पर जान नहीं देते शिमर, इराक के लोगों की भलाई चाहते हैं।
4: वाह वाह वाह, बड़ा लोगों की भलाई का ख्याल आ गया।
3: झूठ और दगलबाजी का कोई चक्कर नहीं, हमारी मुश्किल सिर्फ यह है कि धोखेबाजों को खूब पहचानते हैं।
5: तो अपने आप को पहचानते हो?
3: हमने अपने पड़ोसियों को पहचान लिया है।
0: बकवास बनकर, यहाँ क्या हो रहा है? मैं और मेरे साथी समझते हैं कि आज अबू सुफियान के बेटे को खत्म करने का बेहतरीन मौका है। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मखलूक है खुदा ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया है और वो कूफे के दरवाजों पे उनके फरमान के मुंतजर है। और आज हम यहाँ इसलिए आए हैं कि इत्माम हुज्जत करें और बता दें कि हम हसन इब्न अली से चाहते हैं कि हिंदा के बेटे से जंग का आगाज किया जाए।
6: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल
0: जंग की पेशकश हम करें।
5: हाँ, इसलिए कि तुम हसन इब्न अली के करीब हो।
0: अशस, तुम करीब तर हो, तुम्हारी बेटी हसन इब्न अली के घर में है, तुम क्यों नहीं कहते?
3: क्योंकि अशस मुनाफिकीन में से है और नहरवान में अली के मुकाबले में तलवार चलाई है, इसलिए उसे शर्म आ रही है। इसे छोड़ो कि किसने इब्ने मुलजिम के हाथ में तलवार दी।
0: मक्कार, झूठे,
7: मुनाफिक, धोखेबाज, तिलक घर पे लाना,
8: तुम पे लाना, तुम्हारे पे लाना, नहीं तुम्हारे पे लाना, तुम पे लाना, तुम पे भी लाना, तुम्हारे पे लाना, तुम्हारे पे लाना, तुम्हारे पे लाना, तुम्हारे पे लाना, नहीं तुम्हारे पे लाना, तुम पे लाना।
0: कोई और कुछ कहना चाहता है ताकि हम अबा मोहम्मद तक पहुंचा दें?
3: हाँ, मैं और मेरे साथी, हम कहते हैं कि जंग बहुत हो चुकी, अब मुआविया से सुलह कर लेनी चाहिए।
7: सुलह?
3: क्यों अबा मोहम्मद के चाहने वाले और मुसलमान जो ऐसे खालिस अकीदत रखते हैं साजिश का शिकार हों? लोगों को छोड़ दो, उन्हें अपने घरों को जाने दो ताकि अपने कामकाज में लग जाएं, और उन्हें बेचैनी से निजात दो।
0: कौन सी जमात?
2: اپنے لیے کہہ رہا ہے، یہ ابن حریث اصل میں اپنا آپ کو ایک گروہ سمجھتا ہے۔
0: کوئی اور کچھ کہنا چاہتا ہے؟
1: گستاخی کی معافی ابن عباس، میری خواہش ہے کہ ابا محمد سے جا کر کہو وہ معاویہ کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، نہ جنگ نہ صلح۔ یہ لوگوں کا حسن ابن علی کی طرف جوش و خروش حکومت کی رونق اور ترقی کا باعث ہوگا۔ معاویہ سے کہو کہ تو شام لے لے اور عراق کی جان چھوڑے۔
0: خدا نے کیا عراق کو ابو سفیان کے بیٹے کے نام لکھ دیا ہے کہ جب چاہے لے لیا۔

0: बातों से मेरा खून खौलता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर उस कुत्ते का हाथ इराक की तरफ पड़ा तो मैं भी उसके हाथ काट के फेंक दूंगा।
1: मुआविया ने 20 साल तक शाम और मिस्र पर हुकूमत के दौरान इतना खजाना जमा कर लिया है कि उसे तुम जैसों की परवाह नहीं है।
2: और तुम लोग उसी खजाने के चक्कर में हो।
0: हंसने की क्या जरूरत है?
1: इब्ने अब्बास, ये दारुल खिलाफा है। आपको इस बात की इजाजत नहीं देनी चाहिए कि चंद कीना रखने वाले अफराद जो दिल चाहे बकें और अबा मोहम्मद के दोस्तों का मजाक उड़ाएं।
0: तुम लोग अबा मोहम्मद के पैरोकार हो?
3: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
4: हाँ।
0: तो तुमने उन्हें इमाम चुना है?
4: हाँ।
0: यानी उनकी बयात की है?
5: हाँ बिल्कुल की है। हमने की है बयात।
6: हमने बयात की है।
0: फिर जो वो कहे वही करो। न मैं, न कैस, न हुजर और न कोई दूसरा पैगाम ले जाएगा, और न मैं कुछ कहूंगा। हसन इब्ने अली ने माविया को हक की दावत दी है, अगर कबूल न करे और बगावत पे उतर आए तो हक का दिफा वाजिब, और हम वही करेंगे जो इमाम कहेंगे। हमने जंग की शर्त से उनकी बैत की थी, फिर करो जंग अपने बातिनी शैतान से। आम्र, अगर तुम्हारे वजूद में खुदा का खौफ है तो सुलह करने की सोचो, अगरचे मालूम है कि तुम नहीं कर सकते। कहा अबा मोहम्मद की बैत में हो तो उनकी पैरवी करो, और तुम न जंग चाहते हो न सुल, जाओ अपना काम करो, इमामत के हुक्म के मुंतजिर रहो, वो जानते हैं कि कैसे और क्या करें। हसन इब्ने अली ने किसी से भी शर्त के साथ बयात नहीं ली है। वस्सलाम। खुदा की कसम, हम जंग से कम पे राजी नहीं होंगे। चलो।

0: अब अब्दुल्ला, अभी हम तुम्हारे भाई हसन के घर से आ रहे हैं। उस घर में कोई हमें सही जवाब नहीं देता है।
1: हम लोग तुम्हारे पास आए हैं और चाहते हैं कि तुम हमारे दरमियान कजावत करो।
0: अब अब्दुल्ला, इराकियों से फर्जंदाने हर्ब की पुरानी दुश्मनी है। अगर बनी उमैया इराक पर कामयाब हो गए तो हमारे घरों और बागों को अपने ऊंटों से पामाल कर देंगे।
2: मुसलमानों से परेशान हुई आपने बागात से खौफ ज़दा।
0: जब मुसलमान ही नहीं होंगे तो इस्लाम कहाँ होगा।
1: अब अब्दुल्ला, तुम जानते हो कि हम तुम्हारे बाप अली से राजी नहीं थे, लेकिन जब हसन को खिलाफत मिली तो हमने उनकी बैत की, मगर इस शर्त के साथ कि वो माविया से जंग करें।
2: उन्होंने किसी से भी शर्त के साथ बैत नहीं ली थी।
0: अब अब्दुल्ला, हम आज रात आए हैं कि तुमसे अहद करें। अगर माविया से जंग का वादा करो तो तुम्हारे हाथ पे अपना हाथ दे देंगे। तुम्हारे बाप के बाद हम तुम्हें खलीफा जानते। हाँ, बिल्कुल सही है। क्या कहते हो हुसैन?
2: जब तक मेरे भाई हसन जिंदा हैं, जब तक मेरे वलियों पेशवा हैं और उनकी इताअत और बैत पर हैं।
0: कहाँ चले अब अब्दुल्ला? ठहरो,
1: चलो चलते हैं।

भाइयों, साजिश का मनहूस हाथ खयानत की आस्तीन से बाहर आ गया है और जहर आलूस जालिमाना खंजर हक्कानियत के जनाजे पर पड़ता है। वही हाथ जो बरक इब्ने अब्दुल्ला के मनहूस पंजे में खंजर दिया गया था और जिसने इब्ने अफान ने मजलूम की कमर तोड़ दी थी, वो आप तालियां बजा रहे हैं। और वो क्यों ऐसा करना चाहते हैं? वो इसलिए ऐसा करना चाहते हैं कि खानदान रिसालत का कोई फर्द बाकी ना रहे। उनकी दुश्मनी अमीरुल मोमिनीन मुआविया से नहीं है, कुरान और रसूलुल्लाह से है। वाय उस दिन पर कि जब कूफे वाले तुम्हारी सरजमीन पर दौड़ लगाएं। होश में रहो लोगो।

0: तो क्या कर सकते हैं?
1: हाँ, लेकिन अमीर, ऐसा कोई हुक्म तो उन्हें नहीं दिया गया।
0: फर्ज करो कि उन्हें ऐसा कोई हुक्म दिया जाए तो क्या कर सकते हैं?
1: नहीं मालूम, मगर इतना जरूर जानता हूं कि इस साजिश को नए नक्शोनिगार और चंद खास अफराद दरकार हैं।
2: इसलिए
0: मिसले बरक या इब्ने मुलजिम?
1: बिल्कुल अमीर।
0: खवारिज। और चूंकि वो लोग फिलहाल हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, उनसे इस्तेफादा नहीं किया जा सकता है। फिर रहने दो। कहा कूफे से कासिद आया है?
3: जी हाँ अमीर, हज्जार इब्ने अबजर और अम्र इब्ने हुरैस की तरफ से।
0: क्या कहते हैं?
3: बताते हैं कि हजारों लोग कूफे की तरफ रवाना हो चुके हैं और हसन इब्ने अली से मुलाकात करना चाहते हैं। लिखा है कि अहले हिजाज ने अपनी नुसरत का ऐलान किया है और अहले बसरा व मदाइन भी हसन इब्ने अली के रकाब में लड़ना चाहते हैं। अहले यमन उसकी इमामत पर ताकीद करते हैं, जबकि फ़ारस, इस्तख़र, इस्पहबान, रे और दीगर शहरों के हुक्काम भी उसकी बैत पर मुत्तफ़िक़ हैं। उधर खवारिज मुसलसल हसन इब्ने अली के कान भर रहे हैं और उसको अमीर के ख़िलाफ़ जंग पर उकसा रहे हैं। पूछा है कि अमीर क्या हुक्म फरमाते हैं और ऐसी सूरत में हम क्या करें।
0: जवाब दो कि या खुद ही को मार डालो या हसन इब्ने अली को,
4: तो ये खून तुम्हारी गर्दन पे आएगा।
0: बस मैंने कह दिया।
4: तुम संजीदा तो नहीं हो?
0: क्यों नहीं, बिल्कुल।
4: अगर हसन इब्ने अली को कत्ल करें तो ये खून तुम्हारी गर्दन पे आएगा, और इस बार उनका कुर्ता खुद हमारे खिलाफ नेज़ों पर बुलंद होगा।
0: तुम उन्हें नहीं पहचानते, वो लोग इसके अहल नहीं हैं। अगर अहलियत रखते भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम फौरन उनके खूंखाही का ढोंग रचा कर लश्कर कशी कर देंगे और उन दोनों अहमकों की गर्दनें उड़ा देंगे और शोरगुल का खामोश हो जाएगा।
4: फिर हुसैन इब्ने अली के साथ क्या करोगे?
0: तो फिर लिखो कि तुम लोग खुद को मार डालो, और अगर नहीं कर सकते तो खवारिज को हसन इब्ने अली के कत्ल पर उभारो। खवारिज तो हम में से नहीं है, उनके बाप को भी मार डाला, मुझे जख्मी किया, अब हसन इब्ने अली की बारी है, उन्हें भी मार डालेंगे। मरवान, जो लश्कर दमिश्क में दाखिल हुआ है, उसे इराक की सरहद पे भेज दो। अम्र, आओ मेरे साथ। हसन इब्ने अली को तुमने खत लिख दिया है?
4: क्या खत पढ़ना चाहते हो?
0: नहीं, बस बता दो क्या लिखा है।
4: मैंने लिख दिया है कि मैं तुमसे सिन में बड़ा हूं और इसी वजह से खिलाफत का ज्यादा हकदार हूं।
0: खूब, गुज़िश्ता खुलफा की सुन्नत की तरफ इशारा कर दिया, बताओ।
4: मैंने लिख दिया है, क्योंकि मैं तुम्हारा एहतराम करता हूं इसलिए अहद करता हूं कि मेरे बाद तुम खलीफा हो गए।
0: नहीं, मैं ऐसा वादा नहीं करूंगा।
4: ये स्याही और ये खाल का टुकड़ा, इसका फाड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन इसकी खूबी यह है कि इसमें साजिश की बू आ रही है, और जो भी बाखबर होगा वो ख्याल करेगा इसके पसे पर्दा जरूर कोई मामला है।
0: ठीक है, ये भी लिख दो। लिखो, हसन इब्ने अली, चूंकि तुम्हारी मौत पस्त और कमजर्फ लोगों के हाथ है, एहतियात करो और इराकियों से बचो। ये कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और वो खिलाफत जो मेरा हक, मेरी पैरवी करने वालों का हक, जिन्होंने इसका मुझे लायक समझा और हकदार, तुम्हारे हवाले कर दूं, ये गैर मुमकिन है। कैसा रहा?
4: अलबत्ता ठीक है अमीर, लेकिन फिलहाल ये मुनासिब नहीं है, इसे अगले खत के लिए छोड़ दो।
0: चलो ठीक है।

0: यजीद के पास जा रहा हूं, तुम नहीं आओगे?
1: नहीं अमीर, मेरी सेहत ठीक नहीं है, बूढ़ा हो चुका हूं, अब मुझे बर्दाश्त नहीं है।

0: क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो?
1: क्या बताएं, हम लोग किसान हैं, कूफे वापस आ रहे थे। हसन इब्न अली के सिपाहियों ने हमारा सारा सामान छीन लिया। वो कह रहे थे कि मुआविया से जंग करने के लिए घोड़े और ऊंट चाहिए, और फिर सब कुछ लूट ले गए।

0: लो ये तुम ले लो, जब तुमने इन्हें लूटा था इनके बीवी बच्चे इनके साथ नहीं थे।
1: बच्चे इनके साथ नहीं थे?
2: नहीं, फकत कुछ घोड़े और कमजोर ऊंट थे।
0: अरे ये तो 10 सिक्कों के भी नहीं है, और अगर ये 1000 सिक्कों के भी होते तो तब भी हम इन्हें नहीं बेचते, मार डालते।
2: मगर क्यों भाई, बाजार तो यहाँ से नजदीक है, चलो कम अज कम ज़िबाही कर दो।
0: क्या भूल गए कि हमें यह हुक्म दिया गया था कि जो शह भी हसन इब्न अली के काम आए उसे तबाह कर दिया जाए।
1: जाओ, ये तुम्हारा हुआ और वो तुम रखो, और ये भी ले लो, और हाँ ये तुम रखो, और लाओ ये मुझे दे दो।
3: भाई सही से तकसीम करो ना, अच्छा सब अपने पास रख रहे हो।
1: बकवास बंद करो।

जाओ और इस ऊंट को तुम जिबा कर दो। यार कोई काम की चीज हाथ नहीं लगी हमारे, इन लोगों के पास था ही कुछ नहीं।

0: जबान नहीं कर सकता।
1: आओ, कहाँ हो तुम लोग, मेरी मदद करो। मैं अकेले ऊंट ज़िबा नहीं कर सकता, मेरी मदद करो।
2: तो जाओ, इसकी ऊंट ज़िबा करने में इसकी मदद करो।

0: शुक्र खुदा के सिक्कों के मालिक की नजर में मुझे शर्मिंदगी नहीं हुई। 3,000 शामी दिनार हैं, आप गिनेंगे नहीं?
1: तोहफे के घोड़े के कोई दांत नहीं गिने जाते भाई, ये शरई पैसे हैं क्या?
0: जैसी आपकी मर्जी, जहां चाहे लगाएं। ये 3,000 दिनार उन लोगों की कमाई है जो अपना खून पसीना एक करके अपनी रोजी कमाते हैं और अहले बैत के आशिक हैं। इन सिक्कों को बहुत मेहनत और मुशक्कत से हासिल किया है। फर्जंदे रसूल की रकाब में हाजिर नहीं हो सकते थे तो अपनी गैर मौजूदगी का इजाला करना चाहते थे ताकि जहाद की फजीलत से महरूम न रह जाएं।
1: आपने क्या फरमाया, ये सिक्के कितने घरानों से मुतालिक हैं?
0: वल्ला आलम, मुझे सारी रात बैठकर उन सब के नाम याद कर करके गिनने होंगे। तकरीबन 70-80 घराने होंगे। हाँ,
1: ये बताएं कि सब ने एक जितनी मदद की है या सब घरानों ने अपनी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक भिजवाए हैं?
0: हर शख्स ने अपनी इस्तेदाद के मुताबिक मदद की है। जो तंदरुस्त था उसने कम दिया है और जिसकी इस्तेदाद ज्यादा थी उसने ज्यादा दिया है।

0: कुर्बान जाऊं आप पर, कोई शको तरद्दुद है क्या?
1: ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जिन 70 या 80 घरानों की आमदनी एक जितनी ना हो, उनकी इमदाद ठीक 3,000 दिनार हो? ना एक दिनार कम, ना एक दिनार ज्यादा।
0: अपने बुजुर्गवार की खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा कि 3,000 में से 168 दिनार कम थे जो कि मैंने शामिल कर दिए। ये रकम मैंने हज पे जाने के लिए अलग करके रखी थी, मगर मैंने सोचा कि हज से ज्यादा वाजिब यह है कि अहले बैत की मदद की जाए। मैंने हज को एक तरफ रख दिया और इसे 3,000 दिनार बना दिया।
1: माफ करना कि तुम्हारी बात की सच्चाई पर मुझे शक हुआ। मैं माल की दहारत के बारे में मुतमईन होना चाहता था।
2: ये क्या है?
3: गंदुम है।
2: कहाँ से खरीदी?
3: मैदाने कुनासा से ली है।
2: क्या भाव मिली?
3: उसके बाप के खून की कीमत पर।
2: उसके बावजूद ये सब फरोख्त कर दी उसने।
3: कयामत है भाई, अगर जल्दी करो तो शायद उसके आखिर तक पहुंच जाओ।
2: इतनी सारी प्याज क्यों खरीद ली? ये तो बहुत महंगी है।
4: कल को कहत पड़ गया तो दिलो जान से खाएंगे, पत्थर कंकर खाने से तो बेहतर है ना।
2: खराब नहीं हो जाएगी?
4: आधी सड़ भी जाए तो ना होने से तो बेहतर है ना।
2: कहाँ से खरीदी?
4: मैदान सलीम से ली है।
2: एक मन कितने की है?
4: मन नहीं, एक एक दाने के हिसाब से बेच रहे हैं।
5: हिर्स खुदा की पनाह।
0: इन लोगों को किस बात का हिर्स है?
5: पेट का हिर्स। अफवाह फैली हुई है कि शाम का लश्कर कूफे की तरफ आ रहा है। ये लोग डर रहे हैं कि कहत ना पड़ जाए और ये लोग भूखे ना रह जाए। कूफे के सब्जी फरोशों की ईद हो गई है भाई।
6: ये लोग गवाह हैं कि मेरी बारी है। सारा दिन यहाँ खड़े होकर इंतजार किया है, अपना कारोबार छोड़कर आया हूँ। तुम इधर उधर मुंह मारते हुए अपनी मर्जी से यहाँ आकर अपना हक जमा कर कहते हो कि मेरी बारी है।
5: ऐ लोगो, ये टोकरी यहाँ थी या नहीं थी? ये मेरी टोकरी और ये इसकी निशानी है। मैं ये टोकरी अपनी जगह छोड़कर गया था कि 2 रकत नमाज पढ़कर आ जाऊं बंदे खुदा। मेरी नमाज कजा हो रही थी।
6: तुम्हारी नमाज तुम्हारे किस काम की? दूसरों का हक पामाल मत करो।
5: देख लिया बेनमाजी कहीं के, मैं कह रहा हूँ मेरी बारी है।
6: तुम बेनमाजी, तुम्हारी सार पूछते बेनमाजी। यहाँ मुसलमान चोर कहीं के।
5: अबे क्या कर रहे
6: हो?
7: वो दोनों लड़ने में मसरूफ हैं। सारी शलजम मुझे बेच कर मामला खत्म कर दो।
8: ये शलजम बेकार हैं भाई, ये फरोख्त के लायक नहीं है। मैं इन्हें अपने ऊँटों के चारे के लिए डाल दूँ।
7: ये तो कुफराने नेमत है बंदे खुदा। तुम खुदा की नेमत को ऊँटों के आगे डालोगे और मुसलमानों के बाल बच्चे भूखे रहे?
8: शलजम और चुकंदर कब से खाने का हिस्सा बन गयी?
7: गंदम के ना होने की सूरत में शलजम और चुकंदर तो बादशाह हो जाएंगे।
8: एक शर्त पर मैं बगैर तोले अंदाजन इन सबको 10 मन के हिसाब से बेच रहा हूँ, मंजूर है?
7: बात क्यों नहीं मान रहे बंदे खुदा? ये तो बहुत ज्यादा होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा 7 मन या 8 मन होंगे। 10 मन।
5: अबू खलील, कहाँ हो? अबू खलील, अबू खलील। अरे

0: मैं तो तुम्हारी तरफ से नाउम्मीद हो चुका था। मुझे तो लग रहा था कि अली के चाहने वालों ने तुम्हारी खाल नोच ली होगी। मैं तो सूरह रहमान पढ़कर तुम्हारी मौत का हलवा बांटने वाला था।
1: मामला खराब करने वाले थे वो लोग। इतनी अकील ने मुझे फंसा दिया था। क्या ये शरई रकम है, किसकी है, पूरे 3,000 दिनार क्यों है, हा? कम क्यों नहीं है, ज्यादा क्यों नहीं है?
0: इस कदर चूचना से उसका क्या मकसद था?
1: कहता है कि मेरी बात की सच्चाई में उसे शुबा था। जितना हो सका बात घुमाई मैंने।

0: कितने दिनों से मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया था। दिनों में रोजे रखता था और रातों को नमाजें शब भुगतनी पड़ती थी। इतनी नमाजें पढ़ी जितनी तुम्हारे और मेरे बाप से कजा हो गई थी।
1: तुमने देखा ना, मुस्लिम कूफा ही में था। मुझे यकीन था कि मुस्लिम का कूफे से चले जाना सिर्फ एक चाल है ताकि हम मुस्लिम को कूफा में ना ढूंढें। कुछ बेवकूफ लोग तो मुस्लिम हानी के घर में है। मुझे एक नई बात समझ में आ रही है माकल। हानी की बीमारी झूठ है। हानी ने खुद को बीमार जाहिर किया है और मुस्लिम को अपने घर में पना दी है ताकि बुजुर्गान कौम बहाने अयादत हानी मुस्लिम का दीदार करे और हमारे खिलाफ नित नई साजिश करते रहे और कोई शक ना करे। तुम पर फिदा हो जाऊं हानी, तुम्हारे हक में इज्जत और एहतराम की इंतहा करती। उसके एवज तुमने क्या किया? खयानत? बहुत खूब, हमने हानी की अयादत करके मिजज कबीले का मुंह ऐसे बंद कर दिया है कि वो हमें जरूर इस बात का हक देंगे कि हानी की गर्दन तोड़ दें।
2: Come on, come on.

मैं हूं जनाबे हानी, हमसी मुजाहिद। 3000 दिनारे शामी, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे घर में जनाबे मुस्लिम के हुजूर मैंने 3000 शामी दिनार उनके हवाले किए थे।

0: तुम्हारे पिछले झूठ को मैं नजरअंदाज कर दूंगा, इस शर्त पर कि अब सच बोलो। मुस्लिम को कहां छुपाया है तुमने?
1: अपने इन बेगैरत सिपाहियों से पूछो। औरतों की अबा और चादर पर भी उन्होंने रहम ना किया मगर उन्हें कोई मुस्लिम ना मिले। अगर मुस्लिम मेरे घर में होते तो तुम्हारे मक्कार हीला घरों के पंजे में आ जाते।
0: हानी, मेरा बाप ज़ियाद तुम्हारा करीबी दोस्त था। ऐसा काम ना करो कि मैं अपने बाप की दोस्ती की लाज ना रखते हुए मैं तुमसे ऊंची आवाज में बात करूं। मुस्लिम कहां है?
1: मुस्लिम कुछ अरसा मेरे मेहमान थे इससे पहले कि तुम अपने रस्सी तोड़ाए हुए कुत्तों को मेरे पीछे भेजो। मुस्लिम मेरे घर से चले
2: कहां गया? तुम उसके करीबी साथियों में से एक हो, यकीनन जानते हो कि मुस्लिम कहां गया। क्या नहीं जानते?
1: नहीं, मैं नहीं जानता।
2: झूठे!

0: आवाज सुनी?
1: जी अमीर।
0: ये कैसी आवाज है?
1: आपके कुर्बान जाऊं मैं नहीं जाऊंगा। मुमकिन है कि ये मिस जीत हूं। कौमे कबीला हानी
2: मुस्लिम बिन अकील मेरी हिमायत में था और है, तो मैं थोड़ा सा मौका देता हूँ कि कूफे से चले जाओ और मुस्लिम का पीछा छोड़ो, वरना कूफे को तुम्हारे लिए जहन्नम बना दूंगा।
3: सुन रहे हो, बेगैरती देख रहे हो मुसलमान भाइयों? ये आदमी मेरी हुकूमत में मुझ पर हुक्म चला रहा है। खुदा की कसम इस तौहीद का जवाब इसका खून है।
0: काज़ी शुरे को बुलाओ जल्दी।
3: बिनो रईस, इसे कमरे में बंद कर दो।
0: मुझे कौवों की काहे काहे से डरोगे?
4: ध्यान से अमीर, खुद को इस कौम के शर के सामने मत लाइए, मुमकिन है कि तीर फेंक दे।
3: तूफान से डरने वाला ना खुदा कभी मंजिल पर नहीं पहुंचता।
5: जैसा कि नजर आ रहा है दुश्मन ने ललकार की आवाज सुन ली है। ऐ फसीलों पर छुपे हुए लोगों, पानी को आसाद करते हो या महल का दरवाजा तोड़कर इस महल को तुम्हारा कब्रिस्तान बना दे।

0: कल मैं इस समय तम्मार और आज हानि, यकीनन कल मेरी या फिर आप हसरात में से एक की बारी है। अगर मामला यूं ही चलता रहा तो मौला हुसैन के कूफे पहुंचने तक इब्न मरजाना तमाम शिया उलमा और ज़ोहमा में से एक एक का सर पानी में डबो देगा और रह जाएगी मुट्ठी भर आवाम। बज़ाहिर खौफ़े खुदा रखने वाले शेख को, जो कि काजी शुरा की तरह होगा, भेज देंगे ताकि चार आयतों और हदीसों से लोगों का मुंह बंद करके कयाम का फातिहा पढ़वा देंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हानि को अपने पास रखते हुए उस पर जुल्म जफा करते हुए मिजहजियों का मुंह बंद कर दिया।
1: मैं किसी का मुआखिजा नहीं करना चाहता। अगर आप भी ऐसा गुमान करेंगे तो मुझ पर हक रखेंगे। अगर जनाब मुस्लिम इब्ने उसजा उस शियत का दिखावा करने वाले हीरा घर शख्स की चार रातों की नमाज शब पर भरोसा करके उसे हानि के घर ना ले जाते तो आज हानि की ये हालत ना होती।
2: माज़रत चाहता हूँ शेख, मैं अपने इमाम बरहक की तरफ से कूफा की तरफ भेजा गया हूँ ताकि कूफा वालों की बात की सच्चाई की गवाही दे सकूँ। अब तक तकरीबन 18,000 कूफे वालों ने मेरी बैत की है। मैं अपने चचेरा भाई मौला हुसैन को लिख चुका हूँ कि वो कूफा आ जाएं और आ रहे हैं। क्या आप लोग पिछले हादसात के तहत मुझे शक करने का हक देते हैं?
1: कैसा शक जनाब मुस्लिम?
2: कूफे वालों की वादा खिलाफियों पर। आज मिजहजियों ने यह साबित कर दिया कि कूफे वाले इस जैसे मामलात में बहुत ऊंची आवाजों में नारे लगा सकते हैं, मगर बवक्त जरूरत वो पीछे हट जाते हैं, बिलाखिर अपनी बैत का इनकार कर देते हैं। जब बनी मसद जैसा बड़ा और बानफूस कबीला काजी शुरी की वाजो नसीहत के फरेब में आकर अपने उस बुजुर्ग कबीला को, जिससे इनका खूनी और कौमी रिश्ता है, उसे खौफो खतर के बीच छोड़ सकते हैं, तो फिर मेरे चचेरा भाई हुसैन के साथ क्या करेंगे जिनकी ना कोई कौम है और ना कोई कबीला?
1: तुम्हारे चचेरा भाई की कौम और कबीला शिया है जनाब मुस्लिम। शियों की बैत हर खून और कबीले की बैत से पहले।
2: मैं भी यही अर्ज करना चाहता हूँ, यही अर्ज करना चाहता हूँ कि अब जबकि कबीला बनी मसज ने अपने बुजुर्ग हानि की मदद से हाथ खींच लिया है तो शिया कबीले को उनकी मदद के लिए खड़ा होना चाहिए। मुझे जिहाद का हुक्म नहीं है, मगर हानि की हिमायत करना अपना और शियाओं का फर्ज समझता हूँ। हानि का गिरफ्तार होना हम पर वो फरीजा छोड़ गया है कि अब जायज नहीं है कि हम जगह खाली करें।
1: मैं शियों के कयाम को इमाम अलैहिस्सलाम के कूफा पहुंचने से पहले मकरूह समझता हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि दुश्मन कहीं इस कयाम के बहाने मैदान को मौला हुसैन के लिए दुश्वार बना दे और उन्हीं पिछली अफवाहों को जुबान जदे खासो आम करवा दे कि देखा तुमने लोगों, देखा ना कि हुसैन हुकूमत की लालच रखते थे, देखा ना तुम लोगों ने कि हुसैन जंग का इरादा रखते थे और हुकूमत को अपने जद की मीरास समझते थे। आप लोगों को भी कयाम करने का मशवरा नहीं दूंगा। चुनाचे अगर जनाब मुस्लिम के दलाइल के तहत हानि की हिमायत के लिए खड़े होना चाहे तो गुनाहगार नहीं है।
3: सुलेमान कहाँ?
1: मैं याकूब की तरह अपने यूसुफ के इंतजार में बैठने जा रहा हूँ हबीब।
3: यानी तुम हानि की हिमायत नहीं करोगे?
1: मेरी राय वही है जो तुम लोगों ने सुनी। मैं तुम लोगों के अज़्म ममानियत नहीं करूँगा।
3: मगर तुम ही तो हो जो काजी शुरे जैसे के मध्य मुकाबिल खड़े हो सकते हो। अगर तुम न होगे तो काजी शुरे जाली हदीसों, झूठी बातों और वही के आयात की गलत तफसीर करके लोगों को सुस्त कर देगा।
1: इब्न ज़ियाद शुरह जैसे हरीफ को दो बार मैदान में नहीं भेजेगा। अगर भेज दे तो बसर चश्म में आ जाऊंगा।

0: क्या हुआ है शिम? ये यहाँ मंसूर अहमद किनारे किस बात के?
1: इसराफिल ने सूर फूंक दिया है बिन हुरैस, अपना खौद पहन लो। मुस्लिम और उसके साथियों ने दारुल हुकूमत का आजम किया है। उनके बड़े बिन समामा साइदी और बिन जादाए जदली हैं।

0: से भाग कर आई है।
1: डरो मत, तुम डर गए तो कूफे की इब्न वक्त जमात का क्या कहना, वो भी डर जाएंगे, चूहों की तरह इधर उधर फैल जाएंगे। तुम खौफ व कदर के लड़ाकू शख्स हो, तुम खुद ही तो मुस्लिम को झंक पर उकसाना चाहते थे, रोज दुआएं करते थे कि मुस्लिम तलवार खींचकर मैदान में उतर आए, तो वो आ गया।
2: मैं चाह रहा था माकल, मगर इतनी जल्दी नहीं। उमर साद ने अब तक अपने 10,000 अफराद वाले लश्कर को तैयार नहीं किया।
1: उमर साद के 10,000 अफराद वाले लश्कर पर उम्मीद लगाने के बजाय अपने ना देखने वाले बेशुमार हीलों पर तकिया करो। तुम हार क्यों मान गए? डर अकल की दुश्मन है, डरोगे तो अकल काम करना छोड़ देगी।
2: सुनो माकल सुनो, इनकी आवाज साफ वाजह है कि इनकी तादाद बहुत है। ये नारे कम से कम 2-3 हजार अफराद के हैं।
1: 2-3 हजार अफराद उन 12,000 शामी अफराद के मुकाबले में जो कूफे आ रहे हैं, 4 पर 1 होते हैं।
2: तुम शाम के लश्कर पर यकीन कर चुके हो?
1: नहीं, मैं तुम्हारी तदबीर पर यकीन कर चुका हूँ। क्या मैं काजी शुरे को बुलवा लूं?
2: नहीं माकल, नहीं। ये मेहंदी सिर्फ मिजहजियों के हंगामे में रंग ला सकती थी। उस जैसे चाल एक जानी पहचानी तदबीर है। हमें सामरी के बछड़े का दामन थामना होगा माकल। सोना सोना माकल, कह दो खजाने में जितना भी सोना हासिल किया जाए, मैं सोने के मौजे पर ईमान रखता हूं। मुस्लिम ने वाकई कयाम किया है, मैं सोने से कयाम करूंगा।
3: ए कूफा वालों, आप लोगों ने अदब इंसाफ बरपा करने के लिए कयाम किया है, फिस्क व फजूर के खात्मे के लिए आप लोगों ने उन लोगों पर ते खींची है जिन्होंने वही की बातों को कम वजन करार दिया, झूठ को अपना कर दौलत जमाई, कुफर फैलाया और सितमगर बन गए।

उन लोगों ने कुदरत और हुकूमत को हासिल किया लोगों की खिदमत के लिए नहीं बल्कि अपने ऐशो इशरत के लिए। उन्होंने इफ्तरा और झूठ की परवाह ना की और गीबत को अपनी तफरी का जरिया बना लिया। नमाज रोजे को रयाकारी के लिए अंजाम दिया और हज को गुर्बत फैलाने का जरिया बना लिया। सुन्नत सैयदुल

जाहिली की तरफ रुक करके गुनाहगार हो गए। गुनाह बेईमानी की एक औलाद है, गुनाह खुदा को ना मानने का एक तल्ख फल है, गुनाह यौमुल जजा पर यकीन न रखने का नतीजा है। गुनाहगार शख्स मौत को फना समझता है, बका नहीं, मौत हक है, मीजान हक है, अदल व इंसाफ हक है। ऐ लोगो, आपने उनसे बैत की है जिन्होंने बराए अमर बिल मारूफ और नहीं अनल मुनकर और अपने जद नबी मुरसल की सुन्नत के अहिया के लिए कदम उठाया है। ये गवाही मेरे चचेरा भाई इमाम हुसैन इब्ने अली की है जो आपकी तरफ आ रहे हैं। तो फिर अपनी बैत पर साबित कदम रहिए और अपने खुदा के अलावा किसी से मत डरिए कि खुदावंद आप लोगों में से फरमा बरदारों के साथ रहीम और करीम है और आपके नाफरमानों और सरकशों पर जब्बार और कहार है। ऐ मर्दमे कूफा, हमने आज अपने भाई हानी की हिमायत के लिए कयाम किया है और कुर्सी नशीने कूफा से ये चाहते हैं कि वो अमीरी की कुर्सी छोड़ दे, क्योंकि आज के बाद वो आपकी राय के मुताबिक आप लोगों में किसी किस्म की विलायत नहीं रखता। और ये जान ले कि लोगों की राय के मद्दे मुकाबिल खड़ा होना सिवाय जिल्लत और रुसवाई के और कोई नतीजा नहीं रखता।

0: इतनी बड़ी मुसीबत रूनुमा हो गई और मुझे अब पता चल रहा है।
1: मैं शर्मिंदा हूं अबू इसहाक। हानी का गिरफ्तार होना और मिजहजियों की दास्तान कल रूनुमा हुई थी। हमारा कल मिलने का तय नहीं हुआ था। मैं नहीं जानता था कि तुम्हें कहां ढूंढूं।
0: जहन्नुम में तो नहीं चला गया था ना मैं। इस शहर के एक दो कबीलों की तरफ जाते मेरा कुछ अता पता मिल ही जाता। ग्रुप के वक्त बता रहे हो कि जनाब मुस्लिम ने कायम कर लिया है। क्या मेरे पर लगे हुए हैं कि उड़कर जाऊं और रात तक कूफा पहुंच जाऊं? अगर बहुत ज्यादा भी जल्दी करें और हम नजर कबीलों और तलवारबाजों को मुतला करें तब भी कल गुरूब आफ्ताब तक कूफा पहुंच सकेंगे। और फिर सबके पास घोड़े भी नहीं है। मुझे अपने लश्कर के पैदल चलने वालों के साथ चलना होगा।
1: परेशान मत हो अबू इसहाक, कूफे के हालात मर्जी के मुताबिक हैं। खुदा का शुक्र है कि कूफियों ने जनाब मुस्लिम को कबूल किया। जितनी खिलकत मैंने देखी है वही काफी है कि इब्ने मरजाना के घुटने टेक दे। जनाब मुस्लिम का बहुत दिल चाहता था कि मुख्तार उनके पास होता ताकि फतह की लज्जत से बेबहरा न रहता।

का मतलब है शिया की मौत पर रजामंदी का इजहार। जाओ कियान, जाओ। खुदा ने चाहा तो कल तक मैं अपने लश्कर वालों के साथ कूफा में होऊंगा। फिर मिलेंगे।

शाम का लश्कर हंगामा आराई करने वालों और लड़ने वालों के खिलाफ कूफे आ रहा है और उन्होंने कसम खाई है कि हंगामा आराई करने वालों की औरतों के बाल नोच लें और उनकी लड़कियों को कनीजी पर ले जाएं। ऐ लोगों, ऐ कूफा के लोगों, खलीफा ने कूफे पर कहर नाजिर किया है।

0: तेरी जुल्फें कितनी हसीन हैं, ए हसीन होठों वालियों, ए हसीनो जमील परियों और महकती कलियों, ए गुलिस्ताने हस्ती के खिलते हुए फूलों, खुदा ने जब औरत बनाई मबहूद हो गया खिलकत में, आखिर हैफ नहीं है, देखो ना कितनी गलत बात है, अपने घोड़ों की सुमो के नीचे तुम्हें कुचल कर रख दें।
1: उफ, उफ, उफ।
0: गौर से सुनो, अपने इन जाहिल और हट धर्म शोहरों को लेकर अपने कूफे के सखी अमीर के पास ले जाओ कि तलवार दे दें और बदले में सोना ले लें। एलो
2: शमशीर दे दो सोना ले लो, शमशीर दे दो सोना ले लो, शमशीर दे दो सोना ले लो, शमशीर दे दो आए हाय सोना ले लो, शमशीर दे दो आए हाय सोना ले लो।
3: ये औरतें क्या रस्सी तुड़वा के भागी हैं? ये सब क्या हो रहा है?
4: मुझसे पूछते हो भाई, मैं भी तुम्हारी तरह हैरान हूँ। कूफे के मर्द कुछ कम रुसवा थे कि ऊपर से उनकी औरतों को भी भेज दिया ताकि सारे जहान में हमें बदनाम करें।
3: जरूर इनके पीछे किसी का हाथ होगा, जो भी हो ये चाल इब्ने मरजाना की होगी।
4: अब मैं मुख्तार की बात समझ रहा हूँ इब्ने उसजा। इन औरत नुमा मर्दों से वो खूब वाकिफ था, हैफ कि उसकी तदबीर पर किसी ने कमर नहीं धरी।
3: हमें रास्ते बंद करने होंगे ताकि ये औरतें मर्दों तक न पहुंच सके।
5: राम का लश्कर एक झूठ है, एक धोखा है, इसके बारे में मैं सब जानता हूँ।
6: मैंने खुद उनके कासिद को देखा है, वो हम पर मजनीक से आग वाले पत्थर फेंकना चाहते हैं। आओ आओ आओ किसी पुरमन जगह पर चले आओ।
7: मुझ बेवा माँ ने तुझ जदीम को इस दिन के लिए परवान चढ़ाया कि मेरे लिए रोटी लाने का सबब बने। खुदा सलामत रखे, मैं नहीं चाहती तुम्हारा दाग मुझे सहना पड़े।
3: माँ इसका गुनाह तुम्हारे सर होगा, ये तुम ही थी जिसने मुझे दीन खुदा की नुसरत की लोरियाँ सुनाई थी।
7: अब भी सुनाती हूँ।
3: तो मैं भी तो जहाद करना चाहता हूँ।
7: जहाद तुम्हारे लिए नहीं है, जो कि घर के अकेले कमाने वाले हो, यही हाथ में शाम ठीक है।
8: शकूर तुम्हारी तलवार के वजन जितना सोना मिलेगा।
9: हाय खुदाया, इतना तो ख्वाब में भी नहीं देखा था।
8: तुम्हारा एक खून का कतरा भी निकलेगा और ठीक ठाक सोना मिलेगा। मैं सोने का हार पहनूंगी।
10: आहिस्ता बोलो हबीबा, आहिस्ता, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। ये कैसी बातें कर रही हो?
8: तुमने वादा किया था कि जब महल पर हमला करोगे तो गर्दनबंद मेरे लिए माल गनीमत के तौर पे लाओगे। कल रात को ही वादा किया था, नहीं किया था?
10: हाँ वादा किया था, मगर अभी तक महल पर हमला नहीं किया है।
8: आखिर ये कौन सा तरीका है कि अपनी जान को खतरे में डाल के लड़ो बगैर लड़ाई झगड़े के? तुम्हारी तलवार दे देंगे और बदले में सोना ले लेंगे।
6: आपको शर्म नहीं आती इतनी बड़ी दाढ़ी रख के औरतों पर रास्ता बंद किया हुआ है?
3: खुदा की लानत हो शैतान पर। मेरी बहन, किस कब्रिस्तान में जाना चाहती हैं आप लोग? मैदान जंग औरतों की जगह नहीं है। कैसी शर्मनाक हरकत है, अपने घरों को जाइए और फितना मत कीजिए।
6: कौन सा घर शेख? जिसके कपील को कुर्बानी के मैदान ले गए वो घर नहीं है, जहन्नुम है। आप लोगों को तख्त ताज की हवस है, क्या हमें इसके लिए कुर्बानी देनी होगी?
3: अरे अरे अरे, ये कैसे इल्जाम लगा रही हो औरत? कुछ खुदा का खौफ करो, फौश कलामी मत करो, जाओ। मैं कहता हूँ जाओ और मर्दों के मामलात में टांग मत अड़ाओ।
6: खुदाई की कसम है, अगर रास्ता नहीं खोला तो अबाया उतार दूंगी, बाल खोलूंगी, सीना चाक कर दूंगी, अपने कपड़े फाड़ लूंगी ताकि तुम जैसे बेदीन और काफिर को रुसवा करूं। हट जाओ, सामने से हट जाओ।
11: शर्म करो औरत, वापस आओ।
6: किस बात से शर्माओ बेहर, तो मैंने कौन सी बुराई की है? तुम शर्म करो कि औरतों पर तलवार लिए खड़े हो। हिम्मत है तो मुझे हाथ लगाओ।
3: हट जाओ भाइयों, तुम लोग मर्द हो, इन औरतों के मद्दे मुकाबले नहीं खड़े हो सकते तुम लोग। इनसे निमटने के लिए हमें कोई नामर्द ढूंढना होगा जो इन

0: हम 10-15 अफराद रह गए हैं जो इस बड़े बुर्ज के सामने खड़े हैं। शायद उनके तीर अंदाज हम पर हमलावर हो जाएं। बेहतर रहेगा कि दीवार की पना में जमा हो जाएं।
1: मगरिब का वक्त है, मस्जिद चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए।
2: अव्वल वक्त की नमाज वो फजीलत रखती है कि मलाइका उसके सवाब को गिनने से भी कासिर हैं। आज रात हमसे खुदा का घर भी छीन लिया इन लोगों ने। भाइयों, बेहतर है किसी छत के नीचे नमाज कायम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।

0: नियत कीजिए, तीन रकत मगरिब की नमाज बजा लाता हूँ हाजिर पे जिमा अमीर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की इक्तदा में।
1: अल्लाहु अकबर,
2: अल्लाहु अकबर। Allahu Ekber.

0: इसी मस्जिद कूफा में मेरे चचा अली की दाढ़ी को उनके सर के खून से खिसाब किया गया। मैं कजाए इलाही से कद्रे इलाही की तरफ जा रहा हूं। मुझे हुसैन को खबर देनी होगी कि कूफा वाले वही इंसान नुमा जानवर हैं जो मेरे चचा अली के दौर में थे। मुझे उन्हें कूफा आने से रोकना होगा। कूफे से बचना चाहिए, कूफे से चले जाना चाहिए।
1: शहर के तमाम दरवाजों को बंद कर दिया गया है। नहर वाले रास्ते से कूफे से निकला जा सकता है।
0: तो फिर नहर के रास्ते से जाएंगे। कोई रास्ता जानने वाला रास्ता दिखाए।

0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول رب العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على الإمام المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من العباد. صلوات
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: First of all, I do know that I have to recite in Urdu, but just for a few minutes. I'm seeing so many reciters and so many murabbis over here, and sometimes I'm feeling that I shouldn't have been coming down from Peterborough when there are so many over here. But as has been the command and the request, ke Hussain bhai ne kaha ki aap aake jo hai agar waqt ho to nikaliye, to banda jo hai haqeer aapki khidmat mein hai. मुझे आके तो काफ़ी देर हो चुकी थी और रूम में जो है इस्तराहत कर रहे थे हम, और हम सोच रहे थे कि हमारे पास एक घंटे की फुर्सत है, लेकिन जो आपकी दाद और आपका जोश मैंने सुना तो थोड़ा ऐसा लगा कि एक घंटे से ज़्यादा भी अगर हम पढ़ ले तो आपको जो है तकलीफ़ नहीं होगी. यू डोंट हैव टू वरी हुसैन भाई, नाउ दे हैव गिवन द परमिशन. देखिए, हमारे कम्युनिटी में कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसे परेशानियां हैं कि वी नीड टू एड्रेस दोज थिंग्स, एंड दिस इज़ समथिंग जो है वो रेगुलरली आप देखते रहेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो मुसलसल जो भी कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड है वो कुछ ना कुछ जो है इंसान के अकायद, इंसान के सेंटिमेंट्स, इंसान के बिलीफ्स में एक थोड़ा मॉडरेशन, एक थोड़ा dilution aata hua nazar aata hai. And then that is a time when people need to step up to the plate and hold those issues by the scruff of the neck, aur phir dobara jo hai wo cheez ko itni bar takrar kiya jaye ki phir josh, phir wo appropriate level tak jo hai wo sentiments pahunch jaye, and then jo hai wo gaadi apni patri par sahi chalegi. Aur yahan jo hai aaj ki guftugu mein jo hai wo, kyunki main janta hu ya pehle padh chuka hu, और ख़ुसूसी तौर पर जो है ये सालाना मजलिस जो है वो जो बर्पा की जाती है उसमें भी पहले आ चुके हैं, और आपके सेंटिमेंट्स, आपके जोश को जो है हम समझ सकते हैं. लेकिन आपका कसूर नहीं है, ना मेरा कसूर है, ये दिस इज़ अ रविश, अ रवन दैट हैज़ बीन टेकिंग प्लेस बरसों से, और हर थोड़े दिनों से, थोड़े महीनों से, थोड़े सालों से जो है मौजूआत को लेना पड़ता है, उसको हिट करना पड़ता है, ग्रिल एंड ड्रिल करना पड़ता है, ताकि बच्चे जो है उस मेयार तक पहुंच जाए जिस तरह हमारे माँ बाप ने हमको पहुंचाया. और इसी सिलसिले से जो है आज का जो टॉपिक, आज का जो मौजू, आज का जो पैगाम है वो इसलिए और इस उनवान से चुना गया है कि हम बचपन से जब

सुनते आ रहे हैं कि जब से हम छोटे हैं अकल समझ संभाला, तो हमेशा हमसे कहा गया कि देखो अहले बैत का मकाम इतना ज़्यादा है, इताअत वाजिब है, मोहब्बत वाजिब है, कुल असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, मन अता अलियन अता अनी, जिसने अली की इताअत की उसने मेरी इताअत की, रसूल ने भी कहा और हदीस कुदसी में भी है। और हदीस कुदसी में इस तरह है कि जब रसूल खुदा मेराज पर गए तो यही अल्फाज अल्लाह ने रसूल खुदा से कहा कि मन अता अलियन फ़कत अतानी, जिसने अली की इताअत की उसने मेरी इताअत की। तो एक जो है एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट वास्ता है कि रसूल खुदा ने कहा मन अता अलियन, जिसने अली की इताअत की उसने मेरी इताअत की, और जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। ये इनडायरेक्ट हुआ। एक है डायरेक्ट मेराज के वक्त कि अल्लाह कहता है या अहमद, और अक्सर बेशतर जब रसूल खुदा जब मेराज पे गए तो अहमद का जिक्र होता था, अल्फाज जो आसमानों में यूज़ होता है वो अहमद कहते हैं, या अहमद मन अता अलियन फ़कत अतानी, यानी बराह रास्त अल्लाह कहता है कि जिसने अली की इताअत की उसने मेरी इताअत की। बहरहाल ये हमसे बचपन से जो हमसे सिखाया गया कि जो है अली की इताअत करो, अहले बैत की मोहब्बत रखो, मुतमस्सिक रहो, मुतवस्सिल रहो। लेकिन सामने जो है वो हमारे पास रिवायत में कुछ ऐसे जुमलात मिलते हैं कि कहा गया कि ये शियों का अहले बैत के साथ जो रिश्ता है वो एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है मुतकाबिल, मुतकाबिल यानी इंटरैक्टिव, एक जानबा नहीं है, दो जानबा है, यानी हमारे तरफ से कुछ जो है वो ज़िम्मेदारियाँ हैं हमें अंजाम देनी है, और कुछ ज़िम्मेदारियाँ जो है वो अहले बैत को हमारे नस्बत अंजाम देनी है। और इसके जुमला जो है वो चौथे इमाम, आज कल इंशाल्लाह शहादत की मजलिस है, आज भी इंशाल्लाह हम जो है वो गुफ्तगू के दौरान मसाइब के दौरान जो है मौला का तो जिक्र होगा ही, और मसाइब में भी जो है हम इंशाल्लाह इंक्लूड करेंगे। लेकिन चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थोड़ा सी जो है प्रियम्बल आप बर्दाश्त कर ले, उसके बाद जो है आप तो जानते हैं हमारी रफ्तार, तो फिर जो है इंशाल्लाह एक मरतबा मौजू शुरू होगा तो फिर हम जो है वो इंशाल्लाह बराए रास्त प्रोग्राम मौजू पे आएंगे। तो ये मुतकाबिल अल्फाज जो हमारे पास रिवायत में है ये है, चौथे इमाम ने फरमाया जब मोहब्बत अहले बैत और मोहब्बत शियों की जो है बात हो रही है वो मुतकाबिल ये है कि इन्नल्लाह अखद अल्मीथाक अलैना व अलैहिम, कि हम और जब शियों को जब मुकायसा होता है और हमारा जो है वो रिश्तेदारी और हमारी जो इर्तबात का जो पैमान होता है तो अल्लाह सुबहाने व तआला ने हमसे कुछ पैमान लिया है हमारे शियों के नस्बत, और शियों के नस्बत शियों से पैमान लिया है हमारे नस्बत। अब वो जो शियों के नस्बत अब जो पैमान लिया है, जो एग्रीमेंट बनाया है अहले बैत के नस्बत, वो हम जानते हैं मवद्दत है, इताअत है, उनकी पैरवी करना है। लेकिन जो हम चीज़ मिस आउट करते हैं वो ये है कि कुछ ज़िम्मेदारियाँ परवरदिगार आलम ने अहले बैत पर भी डाली है हमारे नस्बत। अखदल मीथाक अलैना व अलैहिम, हम पर कुछ चीज़ फ़र्ज़ फरमाया है परवरदिगार आलम और हमारे शियों पर फ़र्ज़ फरमाया है। अब शियों का फ़र्ज़ तो आप सुन लीजिए, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ दैट वी मिस आउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कुछ ज़िम्मेदारियाँ अहले बैत ने के ऊपर परवरदिगार आलम ने डाली है हमारे नस्बत। वन ऑफ देम अमंगस्ट अदर्स, इसको एक तो हमारी हिदायत, हमारे साथ मोहब्बत, हमारे मदद करना, ये सब बहुत ही बेसिक है, उसके बाद हम इसको आगे लेके चलेंगे। और यही मौजू पर कि हमारे अहले बैत जो है वो हम तो कहते हैं कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, लेकिन डू यू इवन रियलाइज और डू वी इवन रियलाइज द अमाउंट ऑफ लव जो है वो अहले बैत रखते हैं हमारे नस्बत। आज जो है वो ये गुफ्तगू करनी है आपसे, ताकि हमारे बच्चे जो है हमेशा जो कहते होते छोटे छोटे बच्चे कि वाई आर वी एलिवेटिंग दम सो मच, क्या मकाम क्या है, क्यों हम जो है हमेशा इनके बारे में कहते हैं, दैट इज़ बिकॉज अ लॉट ऑफ देम डोंट नो कि उनके ऊपर अल्लाह ने कुछ जिम्मेदारी रखी है हमारे नस्बत कि हमारी हिदायत करें, हमारी मदद करें। और आप जो है सुनिएगा आज कि उनकी मोहब्बत हमारे नस्बत कितनी कारसाज और कितनी मुफीद होती है। और ये किताबें लिखी गई है, मसलन आप देखिए मुतअद्दिद किताबें, मसलन जो सामने आती बात मसलन इमादुद्दीन अत्तबरी की किताब बशारतुल मुस्तफ़ा लिशियानिल मुर्तदा लिशियातिल मुर्तदा, कि बशारत रसूल खुदा की बशारत मोमिनीन और वो अफराद के जो अली की शिया है। अब वो एक पूरी किताब है इसी बात पर कि वो कौन सी चीज़ें जो शिया अली को मुफीद होती हैं उनकी शिया बनने पर। तो सिर्फ इब्तदाई गुफ्तगू है, आप तहमुल करिएगा। दूसरी मसलन किताब, मसलन हम जो है दुआ करते हैं इमाम ज़माना के लिए, अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ, आपको पता है इमाम ज़माना के लिए हमसे कहा गया है कि मुसलसल आप जो है इमाम

टाइम पर सलाम। फिर कहता सलाम अला मूसा व हारून, मूसा और हारून। मौला कहते देखा जितने भी सलाम हैं या तो मौला नू पे आए, नबी नू पे आए, या नबी इब्राहिम पे आए, या नबी मूसा पे आए, नबी हारून पे आए। किसी इंसान ऑर्डिनरी इंसान पर अल्लाह ने कुरान में सलाम नहीं भेजा। लेकिन बोलते एक फ़र्क होगा, सलाम तो भेजा अम्बिया पर, लेकिन सिर्फ अम्बिया की ज़ात पर, शख्सियत पर भेजा, आल पर नहीं भेजा। नहीं कहा सलाम अला आल नू, नहीं कहा सलाम अला आल इब्राहिम, नहीं कहा सलाम अला आल मूसा व अला आल हारून। लेकिन कहते हमारा सिर्फ खानदान ऐसा है कि परवरदिगार आलम ने कुरान में हम पर सलाम भेजा। तमाम उलमा खड़े हो गए, बताओ हमें कहाँ। कहते सूरह यासीन तुम पढ़ते हो, पढ़ते हो कि नहीं। बोलते पहली आयत क्या है, तो यासीन। बोलते दूसरी आयत क्या है, बोल कुरान अल हकीम। कहते यासीन का मतलब क्या, बोलते इत्तफ़क अल उलमा, मुत्तफ़िक है उलमा कि यासीन रसूल खुदा का नाम है। सबसे पहली आयत सूरह यासीन की, यासीन जो है वन ऑफ द नेम्स ऑफ द होली प्रॉफिट, सही है। तो ये हो गया, ये नंबर 36। बिल्कुल उसके बाद का सूरह नंबर 37 सूरह साफ़त। सूरह साफ़त में आया नंबर 130 अल्लाह कहता है सलामुन अला इल यासीन। इमाम रजा कहते हैं वो इल यासीन था आले यासीन, आले यासीन यानी आले नबी, नहनु आलो यासीन। सिर्फ तन्हा खानदान के कुरान में परवरदिगार आलम अंबिया के बाद जिस खानदान पर सलवात भेजता है वो मोहम्मद व आले मोहम्मद है, वो नहनु आला। तो हम ये ऐसी शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं कि उनका मकाम ये है कि परवरदिगार आलम जो है वो तमाम आलम को एक तरफ रख रहा है, और एक खानदान अहले बैत को जो है उठा कर इतना नुमाया कर रहा है कि कोई खानदान को हम बयान नहीं करेंगे, सिर्फ इस खानदान पर मैं अपनी जाती जातन सलवात भेजूंगा। तो ये एक मकाम, लेकिन ये मकाम तो हम जानते, देखिए दिस इज प्रिलिमिनरी, ये सिर्फ बेसिस है अभी हमारी, ये सिर्फ बेसिस है। तो हम जान चुके कि ये शख्सियत ऐसी है, मकाम इतना है। लेकिन आपको पता है इन शख्सियतों का सैतरा, सैतरा मीन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस द कंट्रोल, इनका जो सैतरा है, इनका जो दायरा रसूख है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, कितना बड़ा है आपको पता है। देखिए ये सब चीज़ें जो है वो आप बिकॉज वी डोंट नो देम वी फील दीज आर ऑर्डिनरी पीपल, एंड देन वो आइडियोलॉजी आती कि अगर जो इनके बारे में अच्छा कहा जाता है तो दूसरे लोग जिन्होंने जुल्म तो किया लेकिन अच्छे काम किए उनके बारे में तो बोले। लेकिन मुकायसा नहीं है, ये इसलिए मुकायसा नहीं क्योंकि आप नहीं जानते, आप इन्हें नॉट यू, ये तो मेरा मजमा जो है पढ़ा लिखा मजमा है, मैं जानता हूँ बरसों से जो है यहाँ सुनते आ रहे हैं। लेकिन वो अफराद के जो कहते कि दोनों को इक्वेट किया जाए, ये समझते नहीं है कि मुकायसा असल इम्कान नहीं रखता। क्यों, सुनिए ये रवायत कहां से, वो शेख सदूक, लेकिन वो उयून अखबार की रदा, उयून अखबार रदा की रवायत थी, ये अलखिसाल की रवायत। और शेख सदूक के लिए इसके लिए मैंने ये हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि सब जानते हैं, तमाम मजमा जानता है कि शेख सदूक की विलादत जो है वह इमाम जमाना की दुआ के जरिए से हुई, ये सब जानते हैं। वो अली इब्ने बाबा का वाकया जो है, तीसरे नायब का वाकया, बच्चे नहीं होते थे, खत लिखा, वो सब आप जानते हैं। बस सफाई सुनो, शेख सदूक की विलादत जो है इमाम जमाना की दुआओं के जरिए से होगी, और वो खुद इफ्तखार करते थे, अना मिन दावत साहिब अल-अम्र, मैं जो हूँ इमाम जमाना की दुआ से मुतवल्लिद हुआ। ये शेख सदूक की किताब अल-खिसाल, शेख सदूक की किताब अल-खिसाल, खिसाल में जो है एक रिवायत है, अब सुनिएगा छठे इमाम की रिवायत। मैं एक हिस्सा जो है वो पढ़ूंगा, तर्जुमा करूंगा, फिर एक लास्ट लाइन जो है वो बाद में पढ़ूंगा। तो छठे इमाम शेख सदूक खिसाल में फरमाते हैं, काल अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम, छठे इमाम के रिवायत, कहते छठे इमाम रिवायत फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि इत्ना अश। ओके, बिफोर आई गो इनटू दैट, देखिए हमारे उर्दू जबान में जब हम डिस्कस करते हैं ना कोई चीज़ों को, कायनात को, तो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसको, दो तीन वर्ड यूज़ करते हैं, उर्दू में एक वर्ड यूज़ करते हैं, इंग्लिश में एक वर्ड यूज़ करते हैं। पहले मैं इसकी तशरीह दे दूँ, फिर जो है वो हदीस की तरफ आता हूँ। एक है कौन, कौन, कौन यानी आलम हस्ती। जब हम कहते हैं शहजादी कौनैन यानी क्या, एक कौन दुनिया का, एक कौन आखरत का, दोनों के कौनैन, शहजादी कौनैन यानी दुनिया की भी शहजादी है, आखरत की भी शहजादी है, सही है। या वी कॉल इट आलम इन अरबिक, ये कौन जो है वो अरबी भी वर्ड है, उर्दू में भी यूज किया जाता है, लेकिन अरबी में जो है इसको कहा जाता है आलम। दिस कौन इज सिनोनिमस टू आलम, इज सिनोनिमस टू यूनिवर्स, सेम मीनिंग है, डिफरेंट जबान में सेम मीनिंग। व्हेन आई टेल यू यूनिवर्स, अगर जो मैं कह दिया एक लफ्ज यूनिवर्स, आपके जहन में क्या आएगा, यानी हर वो चीज दैट इज इन एग्जिस्टेंस, यूनिवर्स। मादीन को और नॉन रिलीजियस पीपल को कहेंगे तो बोलेंगे कि ऑल दिस एंटायर कॉस्मॉस विद ऑल द सोलर सिस्टम्स एंड ऑल द मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स इन अ गैलेक्सी एंड वन ऑफ देम बीइंग द मिल्की वे गैलेक्सी एंड

billions of galaxies in the entire universe, and all of this, which is constantly expanding, is all part of the universe. अगर हम दीनी डायमेंशन में बात करेंगे तो वो कहेंगे दीनदार लोग जो दीन पर मानते हैं, दुनिया में मानते हैं, आखरत में मानते हैं, फिजिकल एंड मटेरियल वर्ल्ड में मानते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी मानते हैं, वो कहेंगे आलम इन एडिशन टू व्हाट दीज मटेरियलिस्ट से एक दूसरा आलम है जो आखरत का आलम है, जो जन्नत है, जो जहन्नम है, जो कयामत का मंजर है, जो आराफ है, ये तमाम को मिला के हो गया एक आलम. आर यू विथ मी? ये तमाम को कहा जाता है आलम, तमाम को कहा जाता है कौन? द मटीरियल वर्ल्ड एंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दैट इज ऑर द वर्ल्ड आफ्टर डेथ. इसको कहा जाता है आलम, अरबी में आलम, इंग्लिश में यूनिवर्स. लिसन टू दिस ट्रेडिशन ऑफ शेख सदूक, नरेटेड बाय द सिक्स्थ इमाम इन द बुक अल खिसान. कहते इन्न लिल्लाह इतना 10 अल्फ आलम. अभी तर्जुमा में करूंगा, पहले सुन लीजिएगा. इन लिल्लाह इतना 10 अल्फ आलम, कुल आलम अकबर मिन सबअ समावात व सबअ अर्दीन, मा तरा आलम अन लिल्लाह आलमन गैरहुम. कहते परवरदिगार आलम, नाउ ही इज टॉकिंग टू समबडी हु इज अंडरस्टैंडिंग, हु समबडी लाइक मैथम तमार, समबडी लाइक सलमान ए फारसी, somebody like अबू बसीर, somebody like मोहम्मद इब्न मुस्लिम. He's talking to those people. कहते हैं कि अल्लाह के पास 12,000 जहान है, आलम है 12,000. ये हमारी दुनिया और हमारी आखरत और जन्नत और जहन्नम इज वन आलम. छठा इमाम फरमाता अल्लाह के पास 12,000 आलम है. और मुज्तहिदीन इस आयत इस हदीस की तफसीर में कहते हैं, सियाक जुमला ये बता रहा है कि पहले थे नहीं. जिस वक्त मौला जो है इस इरशाद फरमा रहे हदीस को, उस वक्त मंजूर है इमाम का कि आज की तारीख में मैं जो बयान कर रहा हूं, मौला परवरदिगार आलम के पास 12,000 आलम है. फिर कहते हर आलम इस 12,000 में अकबर मिन सब असमावात व सब अर्दीन. कहते तुम्हारी जो 7 जमीनें हैं और तुम्हारी जो 7 आसमान है, जिसको तुम जो है मिलाकर आलम कहते हो, रावी से कहते हैं मौला, और हर वो 12,000 आलम जो है तुम्हारी इस आलम से बढ़कर है. और मजे की बात यह है कि हर आलम समझता है कि मेरे अलावा अल्लाह ने किसी आलम को खल्क ही नहीं किया. अब मैं आपसे अगर जो इस हदीस से पहले पूछता कि कोई और आलम है क्या, आप कहेंगे यस देयर इज अनदर प्लैनेट, देयर कुड बी सम लाइफ ऑन इट, देयर कुड बी अनदर प्लैनेट समवेयर इन द अदर्स इन द सोलर सिस्टम इन द यूनिवर्स आउटसाइड द मिल्की वे कहीं होगा, बट दीज आर ऑल पार्ट ऑफ वन आलम. मौला कहते इस आलम के बाहर 12,000 है और हर आलम इन 12,000 में से उनको लगता है मेरे अलावा और हमारे अलावा अल्लाह ने किसी को खल्क नहीं किया. और मुतवातिर रिवायात, इतनी सारी रिवायात, बास रिवायत में कि वो आलम को हमारे आलम के बारे में पता नहीं. ला यारफून इबलीस, वो हमारे इबलीस को नहीं जानते. ला यारफून आदम, हमारे आदम को नहीं जानते. यानी अगर जो हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो दीज आर मॉड्यूल्स. Allah has, we are in one module of dunya and akhirah with 7 earths and 7 skies. ये हमारा एक मॉड्यूल है जिसमें इबलीस है, जिसमें आदम है, जिसमें जन्नत है, जिसमें जहन्नम है. इन लिल्लाह इतना आशरा आलम, ऐसे मॉड्यूल अल्लाह के पास 12,000 है. ये समझ चुके हैं, ये कुदरत खुदा है, ये कुदरत खुदा है कि हमारे जैसी पूरी कायनात 12,000, न वो जानते हैं कि हम वजूद में है, न हम जानते हैं कि वो वजूद रखते हैं, लेकिन है क्योंकि खुदा की कुदरत है. और फिर आखिर में ये तो खुदा की कुदरत हो गई, अब बता रहे कि तुम्हें पता है कि हमारा मकाम अल्लाह के नज़दीक क्या है. अगर खुदा का रसूल खुदा ने कहा अव्वलुमा खलक अल्लाह नूरी, सबसे पहली चीज अल्लाह ने जो खल की वो मेरा नूर था, उसके बाद अली आए, हमारे सामने कायनात को खल किया गया, हमारे सामने तमाम मौजूदात को खल किया गया, इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये आखिरी जुमला छठे इमाम फरमाते हैं, बोलते 12,000 आलम है, हर आलम तुम्हारे आलम से बड़ा है, ऐसे आलम है कि तुम्हें पता नहीं कि वो है वजूद रखते हैं, उनको पता नहीं तुम वजूद रखते हैं, लेकिन परवरदिगार की कुदरत ने 12,000 यूनिवर्स बनाया है. वो अनल हुज्जत अलैहिम, इन तमाम 12,000 में अल्लाह ने मुझे सब पर हुज्जत करार दिया. और इतनी सारी रिवायत है, ये एक रिवायत नहीं है, अभी आपने ना सुनी हो तो मेरी गलती नहीं है, लेकिन इतनी सारी रिवायत इस बात पर दलालत करती है.
یہ جب چھٹا امام فرماتا ہے کہ وہ ان الحجۃ علیہم، یعنی ذات شخص، چھٹے امام کی بات نہیں ہو رہی،

बोलते मेरे बाद जो काजन आएगा वो भी तमाम 12,000 पर हुज्जत होगा, जो अली रजा आएगा वो भी जो है 12,000 पर हुज्जत होगा, मुझसे पहले बाकर और अली जैनुल आबिदीन आए थे वो भी तमाम 12,000 पर हुज्जत है। हमारी खसूसियत अल्लाह ने दी है कि अल्लाह के तमाम मखलूकात पर अल्लाह ने हमें हुज्जत बनाया है। तुम जानो या ना जानो उन मखलूकात के बारे में, दैट इज अ डिफरेंट इश्यू, लेकिन ये हमारा मकाम है। तो पहले मंजिल हमने देखा कि अल्लाह के नजदीक इनका क्या मर्तबा, उनके मर्तबे की वजह से अल्लाह ने उनको

किया हो, तुम्हारी मोहब्बत हमारे दिल में इतनी ज्यादा है कि तुम्हारी माओ से ज्यादा हम तुम्हें ज्यादा प्यार करते हैं। और फिर छठा इमाम फरमाता है, पूरी जिंदगी तुमने हमारी मोहब्बत का नाम लिया, पूरी जिंदगी तुमने हमारी मोहब्बत की तस्बीह निकाली, तुम्हें पूरी जिंदगी तुमने जो है हमारी मोहब्बत की जो है वो का विर्द किया ना। और यही हम देखते आ रहे हैं, कोई भी परेशानी हुई क्या कहते हैं, या अली मदद, कोई भी गम आ गया या हुसैन, कोई भी जो है वो मुसाफरत पे जा रहा है इमाम जामिन बांधो, शादी होती है एंगेजमेंट होता है इमाम जामिन बांधो। तुम पूरी ना कि सिर्फ हमारे साथ, हमारी माएं जो है बच्चों को छोटे बन से कहते बेटा कुछ भी हो जाए तकलीफ हो जाए कह दो या अली मदद। कहते तुम पूरी जिंदगी जो है तुम दम अज मोहब्बत मामी बरी, पूरी जिंदगी तुम हमारी मोहब्बत करते रहे, मरते दम तक तुम करते रहे। लेकिन याद रखना है मेरे शियों, मरने के बाद हमारी नौबत है, मरने के बाद हमारी नौबत है, क्योंकि तुम्हारा इम्तिहान का दौर मरने तक है। मरते दम तक तुमने हमारी तस्बीह निकाली, हमारी मोहब्बत के जो है विर्द गाए, अब मरने के बाद हमारी नौबत। सुनना है किस तरह, सुनना है किस तरह, आंखों से आंसू निकल आएंगे। मैं जो आपको एक हदीस बयान करता हूं, पीछे 25 हदीस सुन के आया हूं, अब खुदा शाहिद है बाज औकात ये रिवायत पढ़ते पढ़ते आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन 25 हदीस तो मैं बयान नहीं कर सकता आपको। हम क्या समझे कि ये कौन शख्सियतें हैं। इमाम कहते हैं मरने के बाद नौबत है मनस्त, मरने के बाद हमारी बारी है, फिर तुम देखिएगा कि तुम्हारी तुम्हारी मोहब्बत क्या रंग लाती है। वो है ना वो नौहा के हश्र के दिन रंग लाएगा, खून शहीदा देखना, ये हश्र के दिन लाएगा, मरने के बाद रंग लाएगा हमारी मोहब्बत अहले बैत की नस्बत। सुनिए किस तरह, एक मद्दा था, ये वाकया मैं ऐसे नकल करता हूं, देखिए फिर रेफरेंस के साथ, ये वाकया भी जो नकल करूंगा इसको जो है आगाए दानिशमंद, आगाए दानिशमंद ईरान के वन ऑफ द वेरी फेमस मुबल्लिगीन, बहुत फेमस, बहुत इल्मी मजलिस पढ़ते हैं ये उनके, मैं किसी मजल्ले में पढ़ा, क्योंकि बहुत सारे जो है मजल्ले निकलते हैं, उसमें उन्होंने ये वाकया नकल किया उनके निस्बत, और वो बयान करते हैं कि ये वाकया जो है हमने सुना आयतुल्ला मजाहिरी, आयतुल्ला अल-उज़्मा हुसैन मजाहिरी। ये हुसैन मजाहिरी कौन, हुसैन मजाहिरी मर्जे तकलीद ईरान में 92 ईयर्स कैद हयात में आज भी है, ज़ईम हौज़ा इल्मिया इस्फहान, कुम के हौज़ा इल्मिया के ज़ईम आयतुल्ला मखारिम शिराज़ी, इस्फहान के हौज़ा इल्मिया के ज़ईम आयतुल्ला हुसैन मजाहिरी। इनकी खसूसियत खुद बहस खारिज देते हैं, लेकिन इनकी खसूसियत और मारूफियत इल्म अखलाक में है। इनके अखलाक के दर्स में ऐसा हुजूम होता है, ऐसा हुजूम होता है कि लोग यानी लोग तरसते, ओलमा तरसते उनके अखलाक के दर्स में बैठने के लिए। शेख हुसैन मजाहिरी, शेख हुसैन मजाहिरी के वास्ते से जो है दागा दानिशमंद ये वाकया नकल करते हैं। क्या वाकया सुनिए, वो कहते हैं ना छठा इमाम फरमाता है, क्या फरमाया कि दुनिया में तुमने हमारे नाम की माला जपी, मरने के बाद हमारी बारी है। अब सुनिएगा, कहते एक मद्दाहन आयतुल्ला हुसैन मजाहिरी, एक मद्दाह जो था वो कहता था कि मेरे मस्जिद में भाई जो मद्दाहन है नौहा खान सोज खान को, तो जिस मस्जिद में मैं जो है खदमत करता था तो उधर एक बूढ़ा आदमी था, उसका नाम था मश्त अली मशहदी। ये मशहद का वाकया, मश्त अली मशहदी एक मरतबा फौत हो गया। अब ये नकल करने वाला नौहा खान उस मस्जिद का इन द सिटी ऑफ मशहद, नाम आदमी का मश्त अली मशहदी, बहुत पीर हो चुका था, बहुत बूढ़ा हो चुका था, गुजर गया। उसकी खसूसियत यह थी, और यह मद्दा खुद कहता है, मतलब बरसों से, आई डोंट इवन रिमेंबर हाउ मेनी डेकेड्स, मतलब उसका सिर्फ एक काम था, आजादारी इमाम हुसैन मजलिस हो, मरसिया हो, नौहा हो, उसका काम यह कि बाहर जाना। आपको पता है हमारा कल्चर में और ईरानी कल्चर में फर्क है, हम जो है यहां चाय नहीं पीते, ईरानी जो है वो मस्जिद में बैठ के चाय पीते आजादारी सुनते सुनते, सुना ना, देखा है आपने, वो दीवार पर जो है वो टेक लगाएंगे फिर चाय पियेंगे, उनका कल्चर हमारा कल्चर। तो जैसे लोग आते थे, नए नए लोग आए, जाहिरी आजाद आ रहा है तो जैसे आए तो उनको चाय देनी है, इसका काम था चाय भरना। जैसे आए चाय भरा, एक आदमी आया चाय लेके जाकर दूसरे को दे दिया। अब जैसे आजाद आते गए, ख्वाह मुहर्रम हो,

Hussain ki azadari. Musht Ali Mashhadi is invariably there. One constant in that mosque, Musht Ali Mashhadi. कहाँ देखेंगे? हमेशा उस जगह पर होगा जहाँ चाय रीज़, निलपोट चाय. कहते एक मर्तबा जब वो फौत हो गए, मतलब मैं तो जानता था ना, मैं तो नौहा खान सौस खान, उसने मस्जिद का मुझे पता है उसकी खिदमत कितने बरसों की थी. कहते एक मर्तबा जब वो गुजर गया तो मैं उसके कब्र पे गया फातिहा पढ़ने के लिए. कहते मुश्त अली मशहदी, तुमने पूरी ज़िंदगी जो है हुसैन की खिदमत की, तुमने पूरी ज़िंदगी हुसैन की खिदमत की है. जरा बताओ तो सही, मौला ने आपके साथ क्या किया? जो मौला की मोहब्बत तुम्हारे दिल में है ना, तो हमारे को तो है यकीन है, रिवाज के जुमले, तुम मोहब्बत करो, हल जजाउ लहसान इल्ला लहसान, सामने से मोहब्बत मिलेगी. वो मोहब्बत जो सामने से आई उसका नतीजा क्या है? मतलब बस दो तीन दिन गुजरे थे, एक मरतबा मैंने ख्वाब में मुश्त अली मशहदी को देखा. अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि आयतुल्लाह हुसैन मज़ाहिरी ने बात की, आगा दानिशमंद जो है वो कहते एक मरतबा ख्वाब में देखा उसको, देखा अजीब हालत, बेहतरीन लिबास, बड़े बड़े महल, आलीशान बाग. कहते मुश्त अली अच्छी जगह है यार आपकी. कहता मौला ने बहुत ध्यान रखा मेरा, मौला ने बहुत ध्यान रखा. कौन? इमाम हुसैन. कहते और नहीं तो कौन? नौकर किसका था मैं? नौकर किसका था? मतलब बताओ जो है, इतने शॉर्ट में थोड़ी हो, जरा जोर से तफसीलन बताओ क्या बात है. कहते सुनोगे? कहते बताओ. बोलते ध्यान रखो, मैं जो बता रहा हूं अमल करो इस पर. बोलते क्या हुआ? बोलते जैसे मैं कब मेरा इंतकाल हुआ, मुझे कब्र में दफन करके आप लोग तो चले गए, आप लोग का जाना एक मर्तबा देखा कि मौला हुसैन का आना, एक मर्तबा मौला हुसैन का आना, मेरे सरहाने आके खड़े हो गए और एक जुमला कहते हैं, खुश आमदीद ए मुश्त अली मशहदी, वेलकम ओ मुश्त अली मशहदी, पूरी जिंदगी तुमने मेरी खिदमत की है ना. तो मौला क्या बताए, बस मोहब्बत थी आपकी. कहते मुश्त अली मशहदी, ये जो हमने आपको सब दिया है ना, बताया मुझे, ये मकाम है तुम्हारा, ये महल है, ये बाग है, ये गिलमान है, ये गुलामे हैं, ये कनीजे हैं, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें एंजॉय करो यहाँ. कहते मुश्त अली ऐसा ना समझो कि हम तुमसे गाफिल थे, तुम समझ रहे थे कि तुम एक छोटे वॉलेंटियर हो, हमारी आज़ादारी आज़ादार के लिए तुम चाय भरते थे. मुश्त अली हमें पता है, इतने साल की खिदमत है, तुमने 12,427 कप चाय भरी है अपने, 12,427 कप चाय भरी है तुमने. फेलन ये जो हमने तुमको दिया हमारे तरफ से हदिया संभाल समझ के ले लो, कयामत में आके हम तुम्हारा हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे. कहना था एक मर्तबा मुश्त अली रोना शुरू करता है, रोना शुरू करता है. ये मद्दा कहता है मुश्त अली गिरिए ना, तो अरे चेहरे गिरिए में को नहीं, रो क्यों रहा है? तेरा काम तो तमाम हो गया, तेरी आखिरत सवर गई. मौला ने आके पहले तो हदिया दिया बरज़ख में और फिर कहा कयामत में मैं तुझे हाथ पकड़ के ले जाऊंगा. यानी बहुत सारी रिवायत में यह कि हाथ पकड़ के ले जाएंगे, तेरा तो काम हो चुका. कहते नहीं मैं इसलिए नहीं रो रहा, मैं रो रहा हूं कि मुझे पता नहीं था कि मौला इतने अपने खादिमों का दकीक मुहासबा करते थे. अगर पता होता तो सिर्फ चाय ना भरता, चाय भर के हर एक कप को ले जाकर रजादार के हाथ में दे के आता. यह है आजादारी, यह है मौला हुसैन, यह है हमारे आइम्मा जो 12,000 आलम पर जो है परवरदिगार आलम उनको जो है हुज्जत बना के भेजा है. यह कोई मुकायसा नहीं हो सकता अरे घरों के साथ. अब ये सुन चुके, इसीलिए आयतुल्लाह बहजत फरमाते हैं, इसीलिए आयतुल्लाह बहजत फरमाते हैं, ना समझो कि हम के मासूमीन और इमाम जो है हमसे गाफिल है, हमारी बातें ना सुनते. उनका तो एक जुमला है, कहते तो तुम्हारे कान, तुम्हारे ध्यान और कान के दरमियान कितना फासला है? कहता आधे बालिश्त, हाफ स्पैन फ्रॉम द माउथ टू द ईयर्स. कहते याद रखो ये आयतुल्लाह मरहूम आयतुल्लाह बहजत, उनकी जो किताबें लिखी गई है उनके नाम से सवानी उम्र सुन पढ़ लीजिए उनकी किताबों में जाकर. कहते हैं कि फासला ध्यान और कान के बीच में हाफ बालिश है. जब इंसान बात करता है ना तो वो आवाज खुद की निकल के उसके कान में आती है, सही है कि नहीं? कहते याद रखो अपने इमाम को जानो, जब तुम कोई बात करते हो, कोई दुआ मांगते हो, कोई इल्तजा करते हो, कोई तवस्सुल करते हो, इससे पहले कि तुम्हारी आवाज तुम्हारे कानों में जाए जो है मौला सुन लेते हैं.
इमाम सुन लेता है।

हमारे पास रसूल खुदा ने एक फॉर्मूला दे दिया कि अली की दुआ अगर हो तो इंसान सआदतमंद हो जाएगा, अली की बददुआ हो तो इंसान जो है वो हलाक हो जाएगा। हम अली की बददुआ से तो तवक्कु नहीं करते, दिन भर जो है हम या अली कहते, लेकिन कैसे गारंटी हो कि अली जो है हाथ उठा के हमारे हक में दुआ करे? हाउ? क्या वही हम पर नाजिल होती है? क्या हम मुस्तकीमन मौला के सामने है? क्या इमाम जमाना हमें खबर देते कि अली जो है आपके लिए हक, आपके हक में दुआ कर ली? गारंटी नहीं है हमारी। हम कहते अली अली, लेकिन अली भी तो कभी कहे शाहनवाज शाहनवाज। हमारा जो है जिंदगी भर कहना अली अली, इट डजंट मेक अ डिफरेंस, लेकिन एक मरतबा अली कहे शाहनवाज तो फिर हमारी जिंदगी संवर गई। लेकिन गारंटी क्या कि अली हाथ उठा के कहे, जिस तरह कहा रहमकल्ला हो या बरा, अल्लाह तुम पर रहम करे, एक जुमला अली का कि परवरदिगार अली बरा पर रहम कर, अल्लाह ने उसके तमाम गुनाहों को बख्श दिया, जन्नत में दाखिल कर दिया, किस तरह हम गारंटी ले सके कि इमाम मौलाए कायनात हमारे लिए हक में दुआ करें? कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, एक रिवायत मेरी नज़रों से गुजरी जो उलमा भी तस्दीक करते हैं, वसाइल शिया की रिवायत है, कामिल ज़ियारात की रिवायत है, इब्ने कौलवे, कामिल ज़ियारात की रिवायत आपको बताएं, इब्ने कौलवे की ये पूरी किताब जो ज़ियारत के ऊपर है, और इसकी रिवायत इतनी मुस्तनद है कि आयतुल्लाह खुई मरहूम सैयद अबुल कासिम खुई कहते हमारे नज़दीक हर रिवायत इस कामिल ज़ियारात की सही सनद। रिवायत के जुमले ये हैं, रिवायत के जुमले क्या हैं? ये आज़ादारा ने हुसैन याद रखिए, अपने मकाम को कम ना समझिए, खिदमत हुसैन को कम ना समझिए, खिदमत आज़ादारी को कम ना समझिए, ऐसा ना समझिए कि यू हैव टू सिट ऑन द मेंबर टू रीच एनी पोजिशन, ये कोई बात नहीं है। बात ये है वसाइल शिया में रवायत के जुमले, मोहम्मद इब्ने मुस्लिम, देखिए मैं देख रहा हूँ टाइम गुजरते जा रहा है, मोहम्मद इब्ने मुस्लिम जो इतना रवायत रावी है कि जो असहाब इजमा में से, कभी मौका मिला तो आपको बताएंगे असहाब इजमा कौन है, वो रिवायत नकल करते हैं कि जब कोई इंसान करबला जाता है ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए जाता है, आज़ादारी हुसैन में जो है शिरकत करता है, तो इन्नल हुसैन यरा, मौला जो है वो उसके मकाम को देखते हैं, हर वो शख्स के जो करबला में सकना लेता है और रहता है, जितने भी दिन, तीन दिन हो, चार दिन हो, पाँच दिन हो, मौला देखते हैं कि कहाँ रहता है, उसको नाम से जानते हैं, उसके वलदियत से जानते हैं, वो जो आमाल करता है मौला देखते हैं, और फिर जो है जब वो आमाल और ज़ियारत कर लेता है, जब जो है वो आज़ादारी कर लेता है, तो एक मरतबा, ये रवायत के जुमले, मैंने कहा गारंटी नहीं है कि मौला हमारे लिए हक में दुआ करे, लेकिन ये रवायत कुछ बता दिए, एक रास्ता, शायद ये रास्ता एक हो कि हम जो है मौला से कहे मौला शायद जो है आप हमारे हक में हाथ उठा के दुआ करें, तो जिस तरह बरा ने जो है वो मुफी इस्तेफादा किया, हम भी जो है फ़ायदेमंद हो जाए। रवायत के जुमले, जब मौला देखते हैं अपने ज़ाहिर, अपने आज़ादार, अपने रोने वाले, अपने पर मातम करने वाले, तो एक मरतबा इमाम हुसैन जाते हैं अमीरुल मोमिनीन के पास, हाथों को जोड़ते हैं, ए बाबा ये मेरे ज़ाहिर है, ये मेरे आज़ादार है, ये मुझ पर रोने के लिए आए हैं, आपसे गुजारिश है आप हाथों को उठाए और अल्लाह के पास इनके हक में दुआ करें। मोहम्मद इब्ने मुस्लिम कहता है जब इमाम हुसैन, अरे लख्त जिगर है ना इमाम मौलाए कायनात का, एक मरतबा जब कहते हैं तो मौला के आंखों में आंसू आ जाते हैं, अली के आंखों में आंसू आ जाते हैं, अरे हुसैन तुम मुझसे कुछ मांगो और मैं तुम्हें ना दूं, एक मरतबा हाथों को उठाते, ए परवरदिगार मेरे हुसैन के आज़ादारों को माफ कर दे। वहां एक जुमला बरा को कहां तक पहुंचा दिया। यहां अगर इमाम हुसैन मौला कायनात से कह दे कि ये हमारे मानने वाले आजादार है, मौला हाथ उठा के दुआ कर देते हैं। अरे आजादारी का मकसद और मतलब समझिए, मोहब्बत अहले बैत का हमारे निस्बत फायदा समझिए, कायनात की साइज, कायनात की ताकत जो है अपने हाथ में है, मोहब्बत अहले बैत इसे जाया होने ना दे, ना अपने दिलों से, ना अपने बच्चों के दिलों से, क्योंकि यही हमारा मुस्तकबिल है और इसी वजह से तो हम जमा हुए हैं ना। ये आज जो जमा हुए हैं ये एक पेशन गोई, यानी एक प्रीकर्सर है कल के मसायब का, चौथे इमाम की शहादत का। चौथे इमाम की शहादत तो कल है, आज तो हम ऐसे तो नहीं गुजर सकते, तो सुनिए हमारे चौथे इमाम क्या कहते हैं। चौथे इमाम बशीर इब्ने मुंदिर अल मदायनी को कहते हैं, अरे साथ हमारे ऊपर ऐसी परेशानियां आई कि हम बयान नहीं कर सकते, अव्वल करबला से लेकर आखिर तक ये सात परेशानी

0: करूंगा। ए लोगो, ए उम्मत मलऊना, अरे ये तो नवासा और पिसारे रसूल, मगर क्या हुसैन पिसारे रसूल ना थे? अरे यहाँ इतना जनाजा इतने शान शौकत से, अरे हुसैन का जनाजा पता है किस शान और शौकत से गुदाले कत्लगा में अरे सर को जुदा किया, तशिये जनाजा किस तरह किया गया, अरे 10 घोड़ों को लाया गया, अरे नाल बंदी की गई, तशिये जनाजा हुसैन हम तेरा करते हैं, अरे पिसरे रसूल का जनाजा अरे घोड़ों के टापों के नीचे पामाल हो गया, अर्श पर फातिमा जमीन पर गिरती है, हाय मेरा हुसैन अब कितना जुल्म बर्दा। وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون। परवरदिगार तुझे वास्ते मोहम्मद आले मोहम्मद का, हमारी इबादत को तेरी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार बानियान मजलिस की इस इबादत को तेरी बारगाह में कबूल फरमा, उनको अजर अजीम अता फरमा। परवरदिगार बानियान मजलिस के तमाम मरहूमीन और हमारे तमाम जो भी हाज़रीन हैं सामीन हैं, हमारे तमाम मरहूमीन की मगफरत फरमा, उनके बरज़क और आखरत के सफ़र को आसान फरमा। परवरदिगार उनके बरज़क और आखरत में उनको तेरे गज़ब और अज़ाब से महफूज रख, उनको जन्नत नसीब फरमा। परवरदिगार जो मरीज़ हैं उनको शिफा कामिल और आजिल नसीब फरमा। परवरदिगारा जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा। परवरदिगारा शियान हैदर कर्रार की तमाम माली मुश्किलात को परवरदिगारा दूर फरमा। परवरदिगारा मौलाए कायनात के सदक़े में उलमाए कराम का साया और मराजे मुज्तहिदीन का साया हम पर बाकी रखना। हौज़ात इल्मिया की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा दुनिया में जो मुसलमानों के अगेंस्ट में जो साजिशें चल रही, परवरदिगारा तमाम साजिशों को नीस व नाबूद फरमा। परवरदिगारा मुसलमानों को सरबुलंद और सरफराज फरमा। परवरदिगारा हमारे आक़िबत में खैर फरमा। हम जब दुनिया से जाए तो या अली और या हुसैन कहते हैं मुझे। परवरदिगार हमारे बच्चों की ईमान की हिफाजत फरमा, उनको परवरदिगार इस पुर तशद्दुद और इस पुर डिवियंट सोसाइटी से परवरदिगार उनकी ईमान की महफूज रखना। परवरदिगार उनको कयामत तक परवरदिगार हमारी जो भी नस्लें हैं सभी के दिल में जो है वो अली और आले अली की मोहब्बत कूट कूट के भर दें। परवरदिगार इमाम ज़माने के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके अवान और अंसार में शामिल कर। परवरदिगार तू हमसे राज़ी हो जाना। سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما تم حسين
1: الله اكبر الله اكبر دوم دبيسا ما شاء الله ما شاء الله یه انگوشترم به شما چرا نشه؟ میدیم بله ما مدعیان صف اول بودیم از آخر
2: تشییع شکوه مند رهبر شهر مراسم

0: कौन हैं ये लोग और कहां से आए हैं?
1: इनके झंडों को तो देखो, लगता है कूफे के अतराफ के मुख्तलिफ कबीले हैं। क्या वजह है कि ये लोग इस तरह इकट्ठा हो गए?
0: इसकी एक ही वजह हो सकती है, फरजंदे रसूल खुदा की बयात। चलो चलें।
2: ये लुटेरे हैं, हसन इब्ने अली के नाम पर लूट रहे थे।
3: लानत हो इन पर, लानत हो, फांसी पे लटका देना चाहिए
4: इन्हें। दारुल हुकूमत ले जाओ।
5: साले अहमद।
6: ओ रशीद है,

0: इधर क्या हो रहा है?
1: वो देखो अहमद और साले।
2: सलाम बाबा।
1: अलैकुम अस्सलाम। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? वाह बेटा।
3: देख रहे हो हर?
1: देख रहा हूँ।
2: आओ, कैसे हो हर्ब?
4: अब्बा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
1: बताता हूँ, तफसीली बात है।
2: रशीद जिंदान क्या हुआ?
5: वो मुआविया के हवाले कर दिया।
2: हमारे बच्चों के साथ क्या किया बाबा? वो लोग कहाँ हैं?
1: बेटा घबराने की बात नहीं, वो लोग बिल्कुल महफूज हैं। मैंने उन्हें देहात भेज दिया है।
6: ये लोग कौन हैं?
2: लुटेरे हैं, हसन इब्ने अली के नाम पर लूटते हैं, गारतगिरी करते हैं।
1: खुदा लानत करे इन पर। इब्ने अब्बास को बताना होगा। ये लोग जगह जगह पाए जाते हैं। इससे पहले भी मैंने इब्ने अब्बास को इनके बारे में बता दिया था।
2: अच्छा, गुलाम फरोश ने हर्ब को पहचान लिया? फिर कैसे आजाद हुआ? और ये तो यहाँ बैठा है।
7: ठहरो भाई, बताता हूँ। जल्दी किस बात की है?
1: ये हमेशा जल्दी करता है।
2: ये देखो हमरे हाथ से कितनी शबाहत रखता है।
1: क्या मतलब? कौन?
8: अहमद।
7: सुनो, रशीद ने हमें हर्ब की गिरफ्तारी का बताया और फिर जासूस के उनवान से माविया के दरबार में ले गया।
2: लिहाजा हम माविया के दो जासूसों से मतलब रखते हैं।
0: मोहम्मद, इधर आओ। उस आदमी को देखो।
7: कौन सा आदमी?
0: वो जो अभी भी बैठा है।
2: जो अभी अभी बैठा है,
7: कौन है ये?
0: वो जासूसों का सरदार है और मैं उसके गुरुओं में हूं। तुम उसे जानते हो?
7: हमारा सरबरा दूसरा है।
1: तुम लोग क्या कर रहे हो?
0: वो आदमी मुआविया के जासूसों का सरदार है। हाँ हाँ, वही जो बैठा है।
4: इब्न अब्बास को बता देना चाहिए। जाओ हर्ब, इब्न अब्बास को बताओ। हाँ, जाता हूं।
2: उसकी बातचीत खत्म हो गई है, वो जा रहा है।
4: वो निकल जाएगा। जाओ अहमद, उसे पकड़ कर ले आओ।
1: हर तरफ से उस पर नजर रखो।
5: चलते हैं।
1: मुझे बेखबर ना छोड़ना।

0: ए भाई, देर या सवेर हम दोनों को एक दस्तखान पे देखेंगे।
1: ना तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब ने खुदा के बंदों से धोखा किया और ना ही उनके फर्जंद ऐसा काम करेंगे।
0: भाई तुम तो अवाम में से हो, हुकूमत के राज़ो न्याज़ की तुम्हें क्या खबर? हुकूमत तो मक्कारी और फरेब से चलती है।
1: भाई माविया और हमारे आस की हुकूमत धोखेबाजी से चलती है, ना कि फर्जंद रसूल की हुकूमत।
0: क्या पता, शाम वालों से पूछो। हसन इब्न अली का खत मस्जिद दमिश्क के मिंबर पर रखा है। शाम में सभी लोग हसन इब्न अली और माविया इब्न अबी सुफयान की दोस्ती से आगाह हैं।
2: भाई ये झूठ है, कौन इन बातों को मानेगा?
3: दमिश्क में सब मानते हैं।
4: कौन?
2: हाँ कैस, वो देखो वो सबको भड़काता है। किसी दमिश्क से आने वाले से पूछो, मालूम हो जाएगा।
1: मुझसे पूछो कि माविया से जंग क्यों नहीं हो रही है, मैं बताता हूँ। जरूर कोई खुफिया तौर पे वादा हुआ है जिसकी वजह से जंग नहीं हो रही है। तुमसे उम्मीद नहीं है इसलिए कि तुम्हारा बाप खवारिज में था और नहरवान में हलाक हो गया।
5: अभी तेरा भाई बनी हाशिम का कुत्ता नहीं था, फिर भी हमारे बाप को बुरा भला कहता है। अभी बताता हूँ तुझे।
6: सुनो,
7: लड़ाई लगा कर चल दिए, रुक के नहीं देखोगे?
0: ये लोग पागल हैं, आपस में बदतमीजी और मुजादला करते हैं।
8: किसी ने उनके दरमियान फितना खड़ा कर दिया होगा।
7: शायद माविया के जासूस भड़काना चाहते होंगे।
0: मैं नहीं जानता, मुझे जाने दो।
8: अब तुम जाके दूसरों को भी भड़काना चाहते हो?
7: झूठी बातें करके
9: पिसरे रसूल खुदा पर झूठा इल्जाम।
10: हसन इब्न अली और माविया के सुलह

0: के बारे में झूठी बातें करो और लोगों को लड़वाओ?
1: बस बहुत हो गया भाई, अब कितना लड़ोगे तुम लोग? तुम पे लड़ना, तुमसे खुदा समझे, तुम्हारी गलती है। ए लोगों जान लो, अहम ऐलान कि अभी दारुल खिलाफा के सामने शाम की जालिम हुकूमत के जासूस को, जो कि मोमिनीन के दरमियान तफरके बाजी के लिए भेजा गया था और लोगों के दरमियान फितना फसाद और जुदाई डाल रहा था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अबा मोहम्मद के हुक्म से फांसी दी जा रही है। ए लोगों जान लो, अहम ऐलान, जान लो,
2: अभी आया,
1: अभी दारुल खिलाफा के सामने
3: आम्र, आम्र, हाँ मैं इधर हूँ। आम्र, वो लोग उस जासूस को कत्ल करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, तुम्हें कैसे मालूम? शहर में मनादी करने वाला लोगों को बुला रहा है।
1: अबा मोहम्मद के हुक्म से फांसी दी जा रही है।
4: माविया ने बहुत से जासूस भेज दिए हैं।
5: मैंने सोचा भी नहीं था कि हसन इब्न अली इस कदर जुर्रत से काम लेंगे कि माविया के जासूसों को भी जल्लाद के हवाले करते।
6: जैसे ही यह खबर माविया तक पहुंचेगी, जंग की आग भड़क उठेगी।
5: और ये वही है जो हम चाहते हैं।
1: मगर मुझे डर लग रहा है, क्योंकि जब जल्लाद की तलवार हरकत में आती है तो इतनी जल्दी नहीं रुकती, और मैं नहीं जानता इसके बाद किसकी बारी है।
3: यकीन नहीं आ रहा?
5: उन दोनों की बारी है, फिक्र ना करो, अब उनकी गर्दनों पे चलेंगी जल्लाद की तीर। देखो अशस कैसे घबराए हुए हैं।
7: अहमद, मोहम्मद, ले आओ उन्हें।

0: भाई देखो हमारा सरबरा वो है, वो देखो लंबे खत का जो दरवाजे के सामने से गुजर के बाहर जा रहा है, जल्दी देखो।
1: हाँ
0: वही लंबा वाला, जल्दी करे वरना भाग जाएगा।

0: तुम वाकई मुगैरा के जासूस हो?
1: हाँ, और हम खतरे में हैं, इसीलिए तुम्हारे पास पनाह लेने आए हैं।
0: खतरे में हो तो यहां क्या लेने आए हो? फौरन चले जाओ, हमारे हालात भी तुमसे अच्छे नहीं हैं।
1: सुनो, तुम लोग हमें अपने से अलग नहीं कर सकते। अगर हम पकड़े गए, इससे पहले कि हमारी गर्दनें उड़ाई जाएं, हम तुम लोगों के बारे में सब कुछ बता देंगे।
0: हमारे बारे में तुम क्या जानते हो?
1: हम जानते हैं कि तुम्हारा राबिता दमिश्क के साथ है और तुमने कई दफा कासिद भेजे हैं, और आज भी एक कासिद तुम्हारे लिए अमीर मुआविया इब्ने अबू सुफियान का खत लाया है।
0: तुम्हें कैसे मालूम?
2: हमारा काम ही यही है, खबर इकट्ठा करते हैं, हत्ता अमीर के दोस्तों के भी। और हाँ, कूफे में सब लोग जानते हैं कि तुम अमीर के तरफदारों में से हो। इस खतरे में अगर हमारी मदद नहीं करोगे और हम गिरफ्तार हो गए तो बेशक हम सब कुछ बता देंगे।
0: तुम्हें कैसा खतरा?
1: हम चार आदमी थे जिन्होंने जासूसों की सरपरस्ती की जिम्मेदारी ली है, जिसकी आज गर्दन उड़ाई गई है, वो हम में से एक था।
0: तो तुम डर रहे हो कहीं तुम्हारा नाम फाश ना हो जाए? हमसे क्या चाहते हो?
2: सिर्फ ये चाहते हैं कि कुछ दिन तुम्हारे घर ठहरे, बस।
0: ठीक है, गुलाम को कह दूंगा।
1: वैसे कासिद अमीर मुआविया की तरफ से क्या पैगाम लाया है?
0: तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है? तुम किस लिए जानना चाहते हो?
2: ना डरो, तुम्हें हम पर एतमाद करना पड़ेगा।
1: हम सब का फरमान दमिश्की से मिलता है।
2: हमें जानना चाहिए कि अमीर क्या कहते हैं, उनकी क्या सोच है और हमें क्या करना चाहिए।
1: बताओ, बोलो, डरते क्यों हो?
0: उसने कहा है कि खवारिज को अबा मोहम्मद के कत्ल पर उकसाया जाए। खवारिज हमारे और मुआविया के दुश्मन हैं, ये नामुमकिन बात है। अमीर यहां से बेखबर हैं और नहीं जानते कि हम किस मुश्किल में गिरफ्तार हैं।
1: खवारिज जब आ मोहम्मद को कत्ल करें, ये काम हम खुद क्यों ना कर लें?
0: दीवाने हो क्या? हम सबको मरवाना चाहते हो?
2: अगर तुम राजी हो तो ये काम हम करते हैं।
0: नहीं, हम कभी भी राजी नहीं हो सकते।
1: अगर आबा मोहम्मद कत्ल कर दिए जाएं, तो तुम भी महफूज हो और हमारी जान भी महफूज है।
2: और अमीर की इताअत भी होगी।
0: तुम कहते हो मुमकिन है?
1: मुमकिन है।
0: खतरनाक नहीं है?
2: इस सूरत हाल से ज्यादा खतरनाक नहीं।
3: तुम सब गवाह हो कि हमने उसे मुस्तकिल चाहा। चाहते हैं कि वो हमें जंग का हुक्म दे और वो लश्कर हमारी मदद को भेजे, और वो खुद हम सब का रहबर बनकर उम्मुल फसाद के खात्मे के लिए आगे बढ़े। लेकिन इस दरख्वास्त का क्या नतीजा हुआ? अबा मोहम्मद हर रोज उसे छूट देते रहे और माविया दिन ब दिन अपना लश्कर इकट्ठा करता रहा, और अबा मोहम्मद ने अपना वक्त माविया खबीस को खत लिखने में सर्फ किया। लेकिन उस खबीस ने हमारी सरजमीन पर जासूस छोड़ दिए, जिसका एक नमूना हम सब ने अपनी आंखों से देखा।
4: हम जानना चाहते हैं कि हम कब तक सब्र करें।
3: कर हम लोग कब तक खामोश रहें?
2: ये कासिदों का आना जाना और उनके आए दिन के चक्कर कब खत्म होंगे?
4: आज भी दमिश्क से कासिद आया था।
3: अबा मोहम्मद आखिर किस चीज के मुंतजर हैं?
2: वो इस वक्त के मुंतजर हैं कि माविया इब्ने अबी सुफियान अपने लश्कर के साथ हम पर टूट पड़े और अपनी सिपाह के साथ हमारे घर बार, मालो मवेशी और मुल्क मिल्कियत को खाक में मिला दे।
3: हम पूछते हैं कि क्या वो वक्त नहीं आया कि लश्कर की सरदारी का इंतखाब किया जाए और दमिश्क की सरहद पर जाने का हुक्म दे दिया जाए?
4: आज सब कुछ वाज़े हो जाना चाहिए।
1: इब्ने ज़िलजोशन, आज सब पे जिम्मेदारी वाज़े हो गई है। हम लोगों पर, तुम पर, मुआविया पर, अली के चाहने वालों पर, कबाइल पर, लोगों पर, और उनके लिए के जो जंग के तलबगार थे और जो सुलह के नारे लगाते थे। امام نے فوج تشکیل دینے کا حکم دے دیا ہے اور عبیداللہ ابن عباس کو اس کا سپہ سالار قرار دیا ہے. اگر وہ مارا جائے تو سعید ابن غیث، اور اگر یہ شہید ہو جائے تو میں غیث ابن سعد سپہ سالار ہوں گا.
5: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.
4: ہم لوگ بھی تو یہی چاہ رہے تھے.
6: یہ تمہارے چاہنے سے نہیں ہو، بلکہ رسول خدا کے بیٹے کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی اور جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ابا محمد نے معاویہ کو اطاعت کی دعوت دی، وہی خط جس کی وجہ سے تم نے اور تمہارے دوستوں نے ہنگامہ کر دیا، اور آج اس کا جواب آیا ہے کہ معاویہ نے اطاعت سے انکار کر دیا ہے. فرزند رسول نے اپنی حجت تمام کر لی اور اب بغاوت کو کچلنے کا وقت آ گیا. اب تم ہو اور یہ وظیفہ، تم ہو اور یہ جنگ، تم نے ابو سفیان کے بیٹے کے فتنے کو نابود کرنا ہے. چلو اٹھا لو اپنی تلواریں، زبانیں بند اور منہ کھول کے چلو میدان جنگ میں آ جاؤ اور دشمن پہ ثابت کر دیں کہ ہمارے بازو اور زبان ایک ہیں.
7: Ha ha ha ha!

0: तुम मुझे पहचानते हो? मैंने कल तुम्हें देखा था, लेकिन नजदीक होने की हिम्मत ना पड़ी। क्या किया है तुमने?
1: कुछ नहीं कर सका, मैं शहर में नया हूं। कौन है ये लोग? ये लोग मुझे रास्ते में मिले थे और ये अबा मोहम्मद के दोस्तों के साथ मुलाक होने का इरादा रखते हैं।
0: बहुत अच्छा, गौर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। कल नहीं, कल के बाद नमाज सुबह के वक्त यहीं रहोगे। एक मुहिम इत्तेफाक होगा।
1: क्या मतलब?
0: अत पूछो, बस जब भी इत्तेफाक हो तो फरियाद करो खवारिज, ये खवारिज का काम है। बस तुमने यही कहना है।
1: ठहरो, कहां ढूंढूंगा तुम्हें?
0: लाजिम नहीं कि तुम मुझे ढूंढो, वक्त आने पे मैं तुम्हें खुद मिल लूंगा।

0: मक्कारी के साथ एक साजिश करीब में है।
1: अब हमें क्या करना चाहिए इब्ने अब्बास? क्या हम हसन इब्ने अली से जाकर कहें कि वो सुबह की नमाज में ना आए?
0: गैर मुमकिन है, मुझे यकीन है वो कबूल नहीं करेंगे।
2: फिर क्या करें, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें ताकि वो फर्जंदे रसूल खुदा को कत्ल कर डालें?
0: हर्ब, रेंदे हारिस, हमें मालूम है उसका क्या हाल है। मोहब्बत की वजह से कह रहा है, हमारा हाल भी उससे अच्छा नहीं है, लेकिन सब्र के अलावा कोई चारा नहीं।
3: सरदार, अबू हमजा तशरीफ लाए हैं।

0: भाई ये खवारिज हैं, खवारिज, खवारिज के अलावा कोई और नहीं हो सकता है।
1: सुना नहीं, इब्ने अब्बास ने लश्कर जमा कर लिया है, अब किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है।
0: तुम लोग क्या कह रहे हो भाई, इतनी जल्दी लश्कर कैसे तैयार हो सकता है?
2: क्यों नहीं हो सकता, मुसलमानों के लिए सुलह की कोशिश हो रही है।

0: देखा ये हार्प तो नहीं था,
1: रशीदी हार्प था। हाँ हार्प, ठहरो।
0: कहाँ जा रहे हो?
2: इब्ने अब्बास ने हुक्म दिया है कि हरावल दस्ते के साथ रहो, इताद के अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन मेरा दिल यहाँ है, कल तुम में से कोई एक मुझे खबर दे, समझ गए ना? जरूर खबर देना। अच्छा
0: अल्लाह हाफिज। आओ चलें, अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, इसलिए कि माविया की जंग के खिलाफ हमने बहुत आवाजें उठाई हैं।
1: अगर इस जंग में अबा मोहम्मद शिकस्त खा गए तो हमारा क्या वजीफा है?
0: तुम सोचते हो अबू सुफियान का बेटा हम पर रहम करेगा?
1: अगर हसन इब्ने अली जीत गए
3: फिर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, वो और उसके साथ ही हमें अली का कातिल जानते हैं।
4: अली के खून का खिसास तो इब्ने मुलजिम ने दे दिया है, ये मालूम होना चाहिए कि इस जंग में हमारा हिस्सा क्या होगा, आखिर हम किस गर्ज से तलवारें चलाएंगे और अपनी जानें देंगे।
0: इब्ने ज़ुल्जोशान तुम कुछ नहीं कहोगे?
4: थका हुआ, सोच नहीं पाता, अब रहने दें, सोच के फिर बात करेंगे।
5: चलो भाई चलते हैं।

0: मुझे मालूम है कि तुम क्या सोच रहे हो। ये जंग हम दो दुश्मनों के दरमियान है, इसमें किसी एक का भी कामयाब होना हमारी शिकस्त है।
1: हकीकत में हम वाकई फाते हैं, अगर अबा मोहम्मद शिकस्त खा जाए तो माविया उनसे और उनके साथियों से नरमी करेगा और फर्जंदे रसूल के कत्ल की जुर्रत नहीं करेगा, लेकिन बिलाशुबह हम सबको अपना वाकई दुश्मन समझेगा और कातिल के उनवान से हमें मौत के घाट उतार देगा।
2: और हसन इब्न अली की फतह के बाद भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये मुसलमानों के खलीफा हैं जो दीन के दुश्मनों से जंग करके फ़ायदा उठाते हैं। अब देखना, इनकी ताकत रोज़ बरोज़ बढ़ती जाएगी और एक दिन हमें क़ैद करके नीस्तो नाबूद कर देंगे।
1: हम इतने सालों से अली से लड़ते आए हैं, लेकिन ऐसी मुसीबतों में गिरफ्तार नहीं हुए।
0: फिर तुमने क्यों माविया से जंग के लिए इतना इसरार किया? इतना ज्यादा इसरार कि हम समझने लगे कि हमारा वजूद ही इस जंग से वाबस्ता है।
1: नहीं मालूम था कि हसन इब्न अली खिलाफत के शुरू में ऐसी जंग कबूल करेंगे, लेकिन इस जंग से उनका इनकार हमारी ताकत का बायस होगा, या नहीं मालूम।
3: तो हमें क्या करना चाहिए?
1: नहीं जानता, रहने तो सोचते हैं। अच्छी तरह गौर करेंगे और तमाम पहलुओं पे नजर डालेंगे। जंग हो या ना हो, हमारे वजूद का फैसला है।
2: तो फिर हम चलते हैं।
1: हाँ अशहस, तुम्हारी बेटी का क्या हाल है?
0: कौन सी?
1: जो हसन इब्न अली के घर में।
0: कोई खबर नहीं, वो अपने शौहर के साथ मशगूल है और अपने शौहर के बाप के कातिल से सुलह का इरादा नहीं रखती।
1: जाओ उसके पास, तुम उसके बाप हो, अपनी बेटी की खबर रखा करो।
0: तुम ऐसे हालात में मुझे अमर बिलमारूफ और सिले रहने की तलकीन करते हो?
1: मेरे मुसलमान होने पर शक है तुम्हें?
0: नहीं इब्ने दिलजौशन, तुम्हारे मुसलमान होने पर शक नहीं करता, बल्कि अपने मुसलमान होने पर इत्मीनान नहीं है।
1: अशहस, क्या नाम है तुम्हारी बेटी का?
0: जोदा।
1: जोदा, याद रखूंगा।
0: कभी कभी तुम ऐसी बात करते हो कि इंसान हैरान रह जाता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या पक रहा है।
1: कभी कभी ऐसे सवाल भी जहन में आ जाते हैं जिन्हें जबान पे नहीं ला सकता।

0: अब आज सुबह में कितना वक्त बाकी है?
1: मुझे नहीं मालूम। यही सवाल किए जा रहे हो।
0: ये रात तमाम होने वाली नहीं। इतनी लंबी रात मैंने पहले कभी नहीं देखी। अगर मस्जिद में अबा मोहम्मद के साथ कोई हादसा पेश आया तो ये मुसीबत कमर तोड़ देने वाली होगी और मैं कभी अपने आप को माफ नहीं करूंगा। मुझसे कैसी हिमाकत हो गई कि उनके मकसद को फौरन ना समझ सका। वाह हो मुझ पर, मैंने क्यों तुम्हें अपनी मदद के लिए ना बुलाया और इस जासूस को पकड़कर दारुल खिलाफा न ले गया। अगर मस्जिद में अबा मोहम्मद के साथ कोई हादसा पेश आए तो क्या होगा?

0: इब्ने अब्बास, उठो सब एक साथ अबा मोहम्मद के पास चलें और उनसे गुजारिश करें कि कल आप मस्जिद न जाएं।
1: नहीं, वो कबूल नहीं करेंगे।
2: क्यों कबूल नहीं करेंगे? जिस वक्त रसूल खुदा को दुश्मनों ने कत्ल करने का कष्ट किया था, अली मुर्तजा को उनकी जगह पे सुला दिया।
0: इब्ने अब्बास, रसूल खुदा अपनी जान की फिक्र में नहीं थे, उनकी शरीयत दरमियान में थी। अब दोबारा वही शरायत का सामना है। इब्ने अब्बास, बस इतनी जगह दें कि हम में से कोई उनकी जगह पे मेहराब में खड़ा हो जाए।
2: जंग है,
3: दुश्मन के सिपाही इस्लाम के दरवाजे पे खड़े हैं, अगर उन्हें कोई नुकसान हो गया तो। उठो इब्ने अब्बास, वक्त हाथ से जा रहा है।
0: अभी सब्र करो, वो नमाज पढ़ रहे हैं।
4: सब कुछ ठीक है।
2: क्या हुआ?
5: आराम करो, अभी एक दो घंटा बाकी।
2: मुमकिन है कल हम सब जल्लाद के हवाले हो जाएं।
6: किसी को तुम्हारे ऊपर शक नहीं होगा, ये खवारिज हैं जिन्होंने हसन इब्ने अली को कत्ल किया जिस तरीके से इनके बाप को कत्ल किया था।
7: ये शख्स कहीं हमें जानता तो नहीं है?
2: ऐसी बात नहीं है, ना तुम्हारा नाम सुना है ना हमारे बारे में जानता है। हमारे एक मातहत ने उसे मामूर किया है, जैसे ही उसका काम खत्म हो जाएगा उसको उसकी उजरत दे दी जाएगी।
7: लेकिन तय तो ये था कि बाद में उसका काम तमाम कर देना है।
2: तुम हमारा मकसद नहीं समझे, उसकी उजरत उसका वही खंजर तो है जो उसके दिल में उतार दिया जाएगा।
7: अगर सच पूछो तो मैं इस काम के अंजाम से मुतमईन नहीं हूं।
4: किसके भाले पड़ गया है खुदा?
7: ये मुमकिन ही नहीं कि कोई तलवार के साथ इब्ने अब्बास, सईद, कैस, हुजर और उदय के दरमियान से गुजर जाए और हसन इब्ने अली के करीब पहुंच जाए, चाहे वो मस्जिद में हो या मस्जिद से बाहर, दारुल खिलाफा में हो या जहां कहीं भी हो, जबकि अभी अली को कत्ल हुए चंद महीने भी नहीं गुजरे हैं।
2: हमारे साथ ये तय हुआ था, जिस तरीके से हम काम को बेहतर समझेंगे उस तरीके से अंजाम देंगे
7: और उसका खर्च हम देंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन ये बात जहन में रहे, हम बिल्कुल मामले से बेखबर थे और अगर कामयाब नहीं हुए तो खुद तुम लोग अमीर के सामने जवाब दे हो। इसी तरह ये भी याद रहे कि हमने कहा कि मुमकिन नहीं है कि कोई तलवार के हमरा हसन इब्ने अली के करीब पहुंच जाए।
8: तलवार की किसने बात की है?
2: क्या तुमने आज तक नहीं देखा किसी सवार को तीर लगे और वो उसी वक्त हलाक हो जाए?
7: यानी तुम उन पर तीर चलाना चाहते हो, यानी मस्जिद में लोगों के दरमियान? कितने फासले से, कहां से? तीर चलाने की कोई जगह ही नहीं है, रास्ते में भी मुमकिन नहीं है, इसलिए कि हसन अपने घर की पुश्त से मस्जिद में आते हैं।
8: कह रहे हैं कि वो अपने घर के पिछले दरवाजे से आते हैं।
0: सब आ जाएं।

0: अभी तक नहीं सोए?
1: नहीं,
0: कल बहुत लंबे सफर पर जाना है।
1: इस परेशान रूह के साथ मुझे नहीं लगता कि तुम जंग में हिस्सा ले पाओगे।
0: नमाज का वक्त हो गया है, जाओ मुअज्जिन से कहो अजान दे।
2: ओह, सुबह हो गई है।